मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 51 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है।

0: है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

विश्व गुरु हमारा देश मानवता की संस्कृति और विविधता की परंपरा लिए निरंतर गतिमान है। इसकी चमक बरकरार रहे, ये संस्कृति फलती फूलती रहे, ये हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। हम अंधेरों से निकल सबके लिए रोशनी बन सकते।

विश्वास वो दीप है जो विषमता में तो हमें थामता ही है, अनुकूलता में भी प्रेरणा बन राह सुगम करता है। ये भरोसा, ये विश्वास यदि उस परम शक्ति के प्रति है जो रचेता है सृष्टि का, फिर वहां क्या भय बाधा।

आस्था श्रद्धा वो मन स्थिति है जहाँ हम सर्वस्व अर्पण कर कार्य और परिणाम के भय से चाह से खुद को मुक्त कर पाते हैं, और यही वह केंद्र है, बिंदु है, स्थिति है जो ईश्वरीय सत्ता से हमें जोड़ती है।

इस संसार के हर कर्म को एक आधार की जरूरत है, जिसके बिन न गति है न स्थिरता। हमारे आधार जितने सुदृढ़ होंगे, जीवन उतना ही सहज विकसित होगा। ये आधार भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, प्रेम किसी भी रूप में हो, जरूरी हैं, बिन इनके सब निराधार।

0: आज की वंदना में आपने श्यामल मित्रा, लता मंगेशकर, बिजानी घोष और पुरुषोत्तम दास जलोटा को सुना।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा

0: रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायन स्वर अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर का है और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

0: कमाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है सेहत।
2: एक चीनी कहावत है, अगर मैं अपने हृदय में एक हरा भरा बगीचा बना लूं, तो गाने वाली कोयलें अपने आप आ जाएंगी। ये उन बुझे हुए निराश लोगों के लिए एक रामबाण दवा है जो जीवन की राहों में चलकर थक गए हैं, निस्तेज हो चुके हैं। स्वयं को प्रकृति से दूर रखा, इसीलिए इतने जल्दी थक गए। प्रकृति को अपने भीतर बसाने वाले सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। उनके विचारों में ताजगी होती है, वे ऊर्जावान होते हैं। कभी किसी दिन आप जल्दी बिस्तर छोड़ दें और बाहर का नज़ारा देखने निकल पड़ें। चिड़ियों की चहचहाहट को अपने भीतर आने दें, ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करें, बादलों को दौड़ता देखें। यदि आपके पास और भी समय हो तो घर से बाहर आकर किसी पार्क में पहुंच जाएं, फिर देखें प्रकृति के सुकुमार किस तरह से व्यायाम करते दिखाई देंगे। बुजुर्ग बच्चों के साथ बच्चे बनकर दौड़ लगा रहे हैं, युवा एक नई उमंग और उल्लास के साथ सूरज की किरणों के बीच एक नई सोच में रंग भर रहे हैं। इन्हें कहा जा सकता है प्रकृति की गोद में खेलने वाले सुकुमार। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में ये संभव नहीं हो पाता, किसी के पास भी समय नहीं है। धन की लालसा और आगे बढ़ते रहने की चाहत ने सब कुछ भुला दिया है। हमारे भीतर ही खो गया है पेड़ पौधों का हरापन। अंतस की हरियाली पीले पत्तों की तरह मुरझा गई है। शहरी शोर और वाहनों का धुआं हमारे भीतर इतनी पैठ जमा चुका है कि हम प्रकृति के सच से दूर हो गए हैं। प्रकृति से जुड़ना तो दूर, हम प्रकृति को भूलने लगे हैं। ड्राइंग रूम में प्रकृति का एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर हम सोचते हैं कि हम प्रकृति प्रेमी हो गए हैं। क्या यही है प्रकृति प्रेम? प्रकृति का राग ही ऐसा है जिसके लिए किसी साज की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हृदय के स्पंदन से प्रारंभ होता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रकृति के बारे में प्रकृति प्रेमी वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि किसी अध्यात्म से अधिक संतुष्टि मुझे अपनी खिड़की के बाहर सूर्योदय के नज़ारे से मिलती है। हमारी कई समस्याओं के मूल में यही भावना है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति ने हमें सदैव दिया है, हमसे कुछ नहीं लिया। उसके पास ऊर्जा की दौलत है, वही हमें लुटाना चाहती है। एक हम ही हैं जो प्रकृति के साथ छोड़कर न जाने किस चाहत में कहां भागे जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज हमें जो शुद्ध वायु मिल रही है वो हमारे आसपास के पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। इन्हें लगाया किसने है? हमारे पूर्वजों ने। यानी पूर्वजों का वो पराक्रम आज हमें काम आ रहा है। आप बताएं, अपनी भावी पीढ़ी के लिए आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो उन्हें काम आएगा? आपका उत्तर शायद नकारात्मक होगा। अपने पूर्वजों के अच्छे कामों की बदौलत आप तो बच गए, अगली पीढ़ी को शुद्ध हवा और पानी भी न देकर उनके साथ किस प्रकार का अन्याय करेंगे, इसकी कभी कल्पना की है आपने? प्रकृति को मां का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया है। इसकी गोद में आकर तो देखो, मां का सच्चा दुलार मिलेगा, वो भी बिना किसी भेदभाव के, निस्वार्थ भाव से। हम इससे हृदय से जुड़ जाएं तो यह हमें उपहारों से लाद देगी। इसका सबसे बड़ा उपहार होता है सेहत का उपहार। प्रकृति प्रेमी इसीलिए कभी बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए आइए प्रकृति से जुड़ें और पालें सेहत की सौगात, फिर इसे बांट दें अपनों के बीच।
0: अभी आपने सुना चिंतन, विषय था सेहत। ये आकाशवाणी भोपाल है।
3: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9

0: दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर के नेमा से जानिए ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य के बारे में।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज की कृषि चर्चा में हम ग्रीष्म ऋतु में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों की बात करेंगे। ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम विशेष तौर पर अभी जो प्रचंड गर्मी हो रही है, कृषि में बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को करने का समय है। मिट्टी की सेहत सुधारने का भी समय है और खरीफ की पूरी सफलता भी आज की तैयारियों पर निर्भर करती है। तो आइए एक एक कर हर बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो खेत की मेड़ों की, पुराने वृक्षों की साफ सफाई और काट छांट कर लें। यदि मिट्टी के नमूने जाँच के लिए भेजना है तो विधिवत मिट्टी को एकत्र करके उसे निर्धारित प्रयोगशाला में भेज दें। इसके बाद प्रति 3 वर्ष में होने वाली गहरी जुताई भी मिट्टी पलटने वाले हल से अवश्य कर लें। आपके खेतों में जल संरक्षण के लिए उचित खांचे, गड्ढे, टांके, जाली आदि जो भी बनवाना हो या बल्लाम तालाब वगैरह की कोई योजना हो तो वो भी करवा लें। मेड़बंदी और खस की पट्टियां आदि भी लगवा लें। इसके साथ ही मृदा संरक्षण के भी उपाय होते जाएंगे। ये ऐसे कार्य हैं जिससे आप पूरे वर्ष भर निश्चिंतता से कृषि कार्य कर सकेंगे। हमारा जो भी अनाज भंडारित करना है, अनाज को पूरी तरह धूप में सुखाकर 8-10% नमी तक उसको ले आएं और उसके बाद ही भंडारित करें। भंडार ग्रहों को मरम्मत अंदर व बाहर करें, चूना पुताई करें, नए वारदाने का प्रयोग करें या पुराने को अगर कर रहे हैं तो 5 मिनट गर्म पानी में डुबाकर सुखाकर ही पुराने वारदाने का प्रयोग करें। सब्जी एवं बेलदार सब्जियों की रोपाई बोनी आदि करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों, भिंडी, बरबटी आदि में पौध संरक्षण जहां जरूरी हो वहां अवश्य कर लें। ग्रीष्मकालीन धान में कंसावस्था में तना छेदक का नियंत्रण कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G को, ये दानेदार होता है, 4G को 20 किलो प्रति हेक्टर के मान से प्रयोग करें। मिर्च में चुरड़ा मुरड़ा की शिकायत इस समय आ सकती है तो उसको रोकने के लिए पायरी प्रोक्सी फेन 10 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से छिड़काव करें या थायोविट 2 ग्राम और डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से इसको मिलाकर और छिड़काव करें। सब्जियों में एवं अन्य फसलों में सिंचाई का हमारे किसान भाई अवश्य ध्यान रखें। हल्की सी दरार दिखने पर तुरंत ही हमारे किसान भाइयों को सिंचाई कर देना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि यह गर्मी का जो मौसम है इसमें 8-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है और जैसी आपके खेतों की मिट्टी हो उसके हिसाब से यह अंतर कम ज़्यादा भी हो सकता है। पौधे सूखने की स्थिति में, जिसको अपन विल्ट कहते हैं या सूखा रोग कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि यंत्रों को साफ करके उनकी मरम्मत करें, ग्रीसिंग आदि करके सुरक्षित छायादार स्थान में रख लें। खरीफ के लिए सभी आदान जैसे बीज है, खाद है, उर्वरक है, जैविक आदान है और जो रसायनों की कहीं आवश्यकता हो जैसे फर्टिलाइजर है, आपका जो खाद है और खरपतवार नाशी हैं, इन सभी आदानों का इंतजाम अभी कर लें। पौध रोपण हेतु गड्ढे आदि तथा अच्छी किस्म के पौधों को प्रमाणित या सरकारी संस्थानों से ही या किसी ख्याति प्राप्त नर्सरी से प्राप्त करने के लिए कोशिश अभी से करें। ट्राइकोडर्मा मतलब है कि जो कई प्रकार के रोग हमारे भूमि जनित होते हैं उसको खत्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग हमारे खेतों में बिखेरने हेतु अवश्य करें और इसके बहुगुणन के लिए देसी खाद का उपयोग करें। उसके बाद ही इसका भुरकाव हमारे खेतों में करके और हल चला बखर चला दें। गर्मी में खेतों में फर्टिलाइजर खाद बोनी के बहुत पहले नहीं बिखेरें। यदि बिखेरते भी हैं तो तुरंत बखर चला दें। वर्मी कंपोस्ट और नाडेप आदि के लिए टांके बनाकर अभी से तैयार कर

0: नरवाई या पराली को कदापि हमारे किसान भाई न जलाएं। इस तरह से ये बहुत जो आवश्यक कार्य है हमारे किसान भाई अपने खेतों में करने का कष्ट करें। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आपने डॉक्टर के नेमा से जाना ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य के बारे में। इसी के साथ ही आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ्ग ह्लाइङ्ग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यान्मार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागरादि नीतिषु म्यान्मार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आङ्ग ह्लाइङ्ग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यान्मार देशः भारतस्य दक्षिणपूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ 98% शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: of our shared future.
2: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः

0: सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रवर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह,

और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन हेतु घरेलू स्तर पर तैयारी, इस विषय पर जानकारी हासिल कीजिएगा लोकेंद्र ठक्कर से। साथ ही आप सुनेंगे राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ मध्य प्रदेश द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर दी गई जानकारी। और इसी कार्यक्रम में बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जाए, इस बारे में जानिएगा डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य से। आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रस्तुत करेंगी हमीदा कुरैशी। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। प्रातः 9:00 सुनिएगा आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजलि सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में कव्वाली गायन के संपादित अंश, कलाकार होंगे मुनव्वर मासूम और साथी। कार्यक्रम शब्द सागर आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर। इसके अंतर्गत हिंदी में आत्मकथा लेखन, इस विषय पर परिचर्चा सुनिएगा। प्रतिभागी होंगे शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। जिले की चिट्ठी का समय होगा प्रातः 10:00। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रामदास मुंगरे का राग भैरव में ख्याल गायन। और शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा दिनांक 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब जानिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पूर्वाहन 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन के 12:00 और दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से के अंतर्गत दिन के 12:30 पर सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी। महिला कार्यक्रम दिन के 1:00, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दिन के 1:45 पर। आज के ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण। उर्दू कार्यक्रम कहकशां के तहत रात 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन, और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन, बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनी सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन

0: यूट्यूब पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में PM ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि 2 खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स अम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के CMHO को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 PM पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात आपने सुनने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, क्या आपसे किसी ने ये कभी शब्द कहे हैं? यदि हाँ, तो सचमुच आप काबिले तारीफ हैं, क्योंकि इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, उसे तकरीबन हर कोई पसंद करता है। सच में दोस्तों, सुनना भी एक कला है, जिसे अपने अंदर विकसित किया जाए तो जीवन में सकारात्मकता की सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो जाता है। वो दूसरों के लिए व्यक्ति सुनने की कला जो रखता है, तो दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है।
1: शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
0: दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात बीच बीच में काटते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं और अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों से अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता होना चाहिए, ज़रूरी है। वैसे भी दोस्तों, एक दूसरे से सुनने से आपस में संबंध मजबूत होते हैं और प्यार बढ़ता है।
2: सुनिए,
3: कहिए, कहिए,
2: सुनिए, सुनिए,
3: कहिए, कहिए ना।

दोस्तों कहने सुनने को अभी हमारे पास बहुत कुछ है, मगर आपको बता दें वक्त हुआ है सुबह के 7:26 और अब हम आपको देने जा रहे हैं समाचार पत्रों से खास खास खबरें।

पहले जुड़ी मौसम से खबर आपको बता दें। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। चिलचिलाती धूप में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मई माह ने विदाई ली। जून की शुरुआत में पहले ही दिन सोमवार कुछ राहत भरा रहा। कई जिलों में बादल और प्री मानसूनी बौछारें हुई। नतीजा 45 डिग्री से ऊपर चल रहा तापमान सोमवार को तकरीबन पूरे प्रदेश में 40 डिग्री के नीचे आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन मौसम ऐसा ही रह सकता है।

प्रदेश में 1 अगस्त से 620 रूट पर चलेंगी 2432 सुगम बसें। राज्य सरकार एक बार फिर से सड़क परिवहन निगम के 2005 में बंद होने के बाद आम जनता को 1 अगस्त से मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के तहत परिवहन सेवाओं की सौगात देने जा रही है। ये बसें 1 अगस्त से शुरू की जाएंगी। पहले चरण में 620 मार्गों पर 2432 बसें चलाई जानी है।

भोपाल के अस्पतालों की कड़ी निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमुख सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधाओं में व्याप्त कमियों को दूर करने और मरीजों के मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं को मानक के अनुरूप बनाने के लिए लागू की गई है।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुनने की कला की। सुनने की कला कहीं ना कहीं सामने वाले का विश्वास जीतने की कला भी है, क्योंकि बात कहने वाले को लगता है कि ये हमारा विश्वासी है, हमारा हितैषी है, तभी ये ध्यानपूर्वक हमारी बात सुन रहा है और सही गलत की हमें सलाह दे रहा है। दोस्तों सुनने की कला

0: ज्ञान के स्तर पर, एकाग्रता के स्तर पर, कम्युनिकेशन स्किल के स्तर पर, यानी कुल मिलाकर ये व्यक्तित्व के स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन है। आपको देखकर ये निगाह रुक जाएगी, खामोशी अब हर बात कह जाएगी, पढ़ लो इन आंखों में अपनी मोहब्बत, सारी कायनात इसे सुनने में थम जाएगी।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

0: मीडियम विवेक 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र, जहां से आप सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं और पढ़ाई शुरू होने वाली है, परंतु आज पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदला है। किताबों की जगह डिजिटल ने ले लिया, क्लास में बोर्ड की जगह स्मार्ट क्लासेस ने ले ली, परंतु किताबों से पढ़ना पढ़ाना अपना अलग ही ज्ञान देता है। तो बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जाए, यही बताने के लिए हमारे साथ में है शहर की जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य।
1: नमस्कार भोपाल को, बहुत सारा नमस्कार।
2: हम मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बच्चों में पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है।
1: जी, इसके पीछे बहुत सारी कारण है, लेकिन जो मैं अभी समझती हूँ कि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, स्मार्टफोन का एज चल रहा है, तो बच्चे जो देखते हैं ना अपने आसपास, वही वो सीखते हैं। अगर वो बच्चे देख रहे हैं कि माता पिता जो है मोबाइल्स का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे टाइम घर पे होते हैं तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे भी फिर वही सीखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई देता है वो कि आजकल क्लासरूम्स भी डिजिटल

0: हो गए हैं, सो कॉल्ड स्मार्ट क्लासेस लगने लगी हैं।
1: जी
0: बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो एक्चुअली में बच्चों को अनस्मार्ट बना रही है। तो पढ़ने का माहौल तभी बच्चे अपना पाएंगे जब घर में वो हम माहौल देंगे, जब वो इर्द गिर्द देखेंगे, माता पिता भी चाहे मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी स्कूल्स को भी कि जहाँ तक हो सके वो जो ब्लैक बोर्ड वाली क्लासेस होती थी ना, वही मेरे हिसाब से तो सबसे सही है।
1: आपने अभी बात की मोबाइल की, सोशल मीडिया की, तो मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकें बच्चों को कैसे आकर्षित कर सकती हैं?
0: पुस्तकें तभी आकर्षित कर सकती हैं जब हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि लोग पुस्तकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जिम्मेदारी हमारे सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को आकर्षित करें पुस्तकों की ओर। उसके लिए ज़रूरत है कि हम लाइब्रेरीज को इंटरेस्टिंग बनाएं, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरीज हों, चाहे वो आपके नेबरहुड लाइब्रेरीज,

0: और मैं तो यही कहना चाहूंगी स्कूल्स को भी कि जहां तक हो सके वो जो ब्लैक बोर्ड वाली क्लासेस होती थी ना, वही मेरे हिसाब से तो सबसे सही है।
1: आपने अभी बात की मोबाइल की, सोशल मीडिया की, तो मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकें बच्चों को कैसे आकर्षित कर सकती हैं?
0: पुस्तकें तभी आकर्षित कर सकती हैं जब हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि लोग पुस्तकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जिम्मेदारी हमारे सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को आकर्षित करें पुस्तकों की ओर। उसके लिए ज़रूरत है कि हम लाइब्रेरीज को इंटरेस्टिंग बनाएं, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरीज हों, चाहे वो आपके नेबरहुड लाइब्रेरीज। नेबरहुड लाइब्रेरीज तो मानो ख़त्म सी ही हो रही है, तो ये सब डेवलप करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4 साल के अबव होते हैं और जो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं, तो उस समय तो ये बिल्कुल स्टडीज़ में दिखाई गई है कि 6 ईयर्स के बिलो तो कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कि टेलीविज़न भी नहीं एक्सपोजर होना चाहिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन आजकल दुर्भाग्यपूर्ण हम देखते हैं कि बच्चे एक एक साल, दो दो साल के बच्चों को जो है माता पिता मोबाइल थमा देते हैं, और कई बार बड़ा प्राउड फील होते हैं कि बच्चा तो हमारा कार्टून खोल लेता है, बच्चा तो बच्ची तो हमारी यूट्यूब खोल लेती है। ये हम बहुत अपने जो आने वाले जनरेशन और जो ये जो डेवलपिंग ईयर्स के बच्चे, इनके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं।
1: तो आपने बच्चों की बात करी, तो किस उम्र में पढ़ने की आदत बच्चों में विकसित की जानी चाहिए और इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है?
0: जी देखिए, पेरेंट्स की तो सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि घर जो है वो पहला स्कूल होता है। तो पेरेंट्स की भूमिका ये होनी चाहिए कि बच्चों के सामने मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जब आपका बच्चा बिलो टीन का है तो आप एक स्पेसिफिक टाइम में ही मोबाइल यूज़ करें, जो बच्चा जब सामने ना हो। बच्चे के सामने आप बुक्स पढ़िए, बच्चों के साथ आप बैठ के ग्रुप डिस्कशन कीजिए, बच्चे के साथ आप हॉबीज डेवलप कीजिए, बच्चे के साथ आप स्टोरी टेलिंग कीजिए। यही सब जो है बच्चों को आकर्षित कर सकती है। और पढ़ाई की जो उम्र है वो तो छोटे उम्र से ही किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग खुद पहले किताब पढ़ें घरों में, जो बच्चा देखे।
1: तो मैडम, किताब की बात जब हुई है तो बच्चों के लिए किताबें चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: ये सवाल बहुत अहम है, लेकिन हर डेवलपिंग ईयर के साथ जो है वो उसमें बदलाव आना चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करते हैं, जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनके तो लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पिक्टोरियल बुक्स होती है ना, जहाँ पे छवियाँ बहुत है, पिक्चर्स हैं, ताकि वो हम उनको सिखा पाएँ, उनको ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करा पाएँ, उनके लिए वर्ड डेवलपमेंट करा पाएँ। उसके बाद जब बच्चे लेटर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 3-letter word, 4-letter word पढ़ने लगते हैं, तब उनको छोटे सेंटेंसेस वाली स्टोरीज जो है, जिन स्टोरीज में सिर्फ 5-6 वाक्य हों और छोटे छोटे सेंटेंस हो, उसमें भी जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे उम्र के हर पड़ाव में, मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो उस हिसाब से बुक्स की कॉम्प्लेक्सिटी हो। और जितना सरल बच्चों के लिए हम स्टोरीज बताएंगे, चाहे वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो, हिस्टोरिकल एपिसोड्स हो, मॉरल वैल्यू सिखाने वाली चीज़ हो, तो ये जो है 4-5 साल से हम कह लें कि 12-13 साल की उम्र तक ग्रेजुअली हम जो है बच्चों को एक्सपोजर दें उनके एज के हिसाब से।
1: मैडम, नियमित पढ़ने से भाषा, कल्पना शक्ति और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: इंसान जो है ना, उसकी सेंसेस हैं, 5 जो सेंसरी सिस्टम्स हैं, टच है, आईसाइट है, स्मेल है, हियरिंग है, वाइब्रेशन सेंस है। तो हम इंसान जो है इन सेंसरी ऑर्गन से बने हुए हैं। तो जब बच्चा एक किताब पकड़ता है तो एक जो उसके टेक्सचर की फीलिंग आती है, फिर उसको जो एक विजुअल इम्प्रेशन पड़ता है, ये दोनों चीज़ मिलके बच्चे की जो इमेजिनरी पावर है उसको डेवलप करती है, उसकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। तो धीरे धीरे जब बच्चे की खुद की इमेजिनेशन डेवलप होगी, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, तो उसका ब्रेन जो है बेहतर डेवलप होगा। पर जहाँ बात ऑडियो विजुअल इनपुट की आ जाती है, जहाँ पे बनी बनाई चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो उससे वो क्रिएटिव एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, इमेजिनरी पावर कम हो जाती है, क्योंकि आपको सब कुछ परोस के दिया जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है।

0: तो निरंतर पढ़ाई करने से, किताब से पढ़ने से आपकी बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, आपकी बहुत सारी कैपेसिटीज एनहांस होती है, ये समझना बहुत जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबें जो हैं इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है, और चाहे वो बड़े बड़े राइटर्स हों, शायर हों, पोएट्स हों, लेखक हों, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अपने भोपाल के ही बशीर जी, मतलब अगर आप इनकी लेख पढ़ोगे, इनकी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी डीप थिंकिंग और कितना वास्ट नॉलेज हमारी संस्कृति के पास है। तो हम इसको खोए नहीं। ये डिजिटल वर्ल्ड तो आपको यूज़ करना ही है, लेकिन जो बेस है वो पक्का होना चाहिए, वो दुरुस्त होना चाहिए, उसके लिए किताबें जो हैं सबसे बेहतर शुरुआत हो सकती है।
1: बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दे रही थी मनोचिकित्सक डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य। दोस्तों, किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वे अनुभव, ज्ञान और कल्पनाओं का अथाह सागर होती हैं। तो ज्ञान, शिक्षा, कल्पना और तर्क बुद्धि को तेज करता पहेलियां बुझाता गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, भीषण गर्मी से अब कुछ ही दिनों में हमें छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि प्री मानसून शुरू होने वाला है। तो प्री मानसून अवधि जल संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, बता रहे हैं श्री लोकिन ठक्कर, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी इपको।
1: देखिए, बारिश का मौसम अभी शुरू होने वाला है और जब मानसून जो हमारे देश में जिसके माध्यम से बारिश होती है उसके पहले कुछ प्री मानसून कुछ बारिश होती है, कुछ बौछारें पड़ती हैं। तो ये जल संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि यदि आप अपने घर की छतों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस समय अपनी घर की छतों को साफ कर लीजिए ताकि आप बारिश के समय जो बारिश का पानी है जिसको आप अपने जल संचय जो आपने संयंत्र लगाया है जो प्रक्रिया लगाई है उसके माध्यम से आप या तो अपने घर की टंकियों को भर लें या भूजल में जो आपका बोरवेल है उसके माध्यम से वापस भूजल को रिचार्ज करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी छत जो है साफ़ होनी चाहिए और आपके सारे सिस्टम्स क्लीन होने चाहिए ताकि आप बारिश के मौसम में आप तैयार रहें बारिश के पानी को थामने के लिए।
0: तो घरों में वर्षा जल संचयन के लिए क्या क्या सरल उपाय हम अपना सकते हैं?
1: सीधी सी बात है कि बारिश पानी का एक बहुत बड़ा उपलब्धता का एक संकट हमारे देश में आ सकता है यदि हम अपने पानी को सहेजेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो बारिश का पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का मूल स्रोत बारिश से होता है, तो बारिश के पानी को सहेजना, जहाँ पे गिरे पानी वहीं उसको थाम लो, ये एक छोटा सा सिद्धांत है। तो अगर बारिश का पानी आपकी छत पे है तो आप उसको वहीं थामिए, रोकिए, उसको सहेजिए। और उसके माध्यम से उसके कई तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने घर में अगर आपके पास बड़ी टंकी है जिसको आप भर सकते हैं उस बारिश के पानी को, क्योंकि

0: बारिश का पानी बहुत स्वच्छ होता है। अगर आपके यहाँ जिस इलाके में आप बारिश का पानी का संचय कर रहे हैं, यदि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं है, तो आपके बारिश के पानी को बहुत स्वच्छ है, उसको आप पी सकते हैं, मगर पीने लायक उसकी गुणवत्ता होती है।
1: अच्छा
0: तो इसलिए अगर आप अपने घरों की छतों से पानी को स्टोर कर लेते हैं, जैसा गुजरात में, राजस्थान में आप देखते हैं कि वहाँ साल भर तक बारिश के पानी को स्टोर करके पीने के लिए काम आता है। थोड़ा सा उसको उपचारित करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन अन्यथा कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है। दूसरा, अगर आप बारिश के पानी से, आपने कोई ऐसा फिल्टर वगैरह लगा रखा है और फिल्टर लगा करके आप उस पानी को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, तो आपको वो भी ज़रूरी है कि पानी को आप छत को साफ रखें, आपके फिल्टर सिस्टम को क्लीन करें, और उसके बाद फिर उस पानी को आपके भूजल में, जो आपका बोरवेल है, ट्यूबवेल जो आपने लगा रखा है या कहीं किसी मोहल्ले में लगा है, उसके माध्यम से वापस अब ज़मीन में उस पानी को उतारते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी में अगर ज़रा सा भी कोई अगर किसी किस्म का कॉन्टमिनेशन हुआ या प्रदूषण हुआ, तो वो भूजल को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वच्छ बारिश के जल को अपनी छत से गंदा ना होने दें, साफ़ करें और स्वच्छ तरीके से फिल्टर करके हम उसको फिल्टर मीडिया के माध्यम से भूजल में रिचार्ज करें।
1: तो सर, जानना चाहेंगे शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: सी। देखिए, शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, यदि आपका तात्पर्य बारिश के पानी से है, तो ज़रूरी है कि हमको, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि बारिश का पानी गिरा और चारों तरफ पक्का किया हुआ है, हमने सड़क बनी हुई है या कंक्रीट है,
1: सब बह जाता
0: सब
1: है।
0: पानी बह जाता है, ज़मीन के अंदर पानी जा नहीं पाता।
1: जी
0: तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारे ऐसे स्थान को छोड़ें जहाँ बारिश का पानी मिट्टी के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाए और
1: जी
0: हमारे जो ज़मीन का भूजल है
1: जी
0: उसको रिचार्ज करें। नंबर एक, जो हमारे जिसको हम शैलो एक्वीफर्स कहते हैं, जो ऊपर ऊपर हैं, जो डीप एक्वीफर्स हैं, वो तो अपनी परंपरा, अपनी प्रक्रिया के अनुसार, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुसार वो रिचार्ज होते हैं, लेकिन शैलो एक्वीफर्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं यदि हम अपने बारिश के पानी को मिट्टी के माध्यम से ज़मीन में जाने के लिए अलाउ करें। दूसरा यह है कि अगर हम घरों की छत पर, आज भी हम देख रहे हैं कि सोलर रूफटॉप तो देख रहे हैं हमारे घरों में, आप
1: जी
0: सोलर रूफटॉप लगे हुए हैं, लेकिन सोलर रूफटॉप के साथ साथ क्या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है? अधिकांश घरों में अगर किसी ने खर्चा करके 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके अपनी बारिश के पानी को फिल्टर विल्टर लगाया भी है, उसका उपयोग लोग नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हर घर में भी हम ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत जल संचय का व बारिश के जल को संचित करने की प्रक्रिया को अपनाएं, तो हमारे इससे बहुत अधिक मात्रा में हम पानी को भी एकत्रित कर सकते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं।
1: सर, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां जल संरक्षण के कौन कौन से पारंपरिक तरीके आज भी प्रभावी हैं?
0: बहुत सारे हैं। देखिए, बारिश के जल को अगर हम संचय करना चाहते हैं गांव में, तो एक सिंपल उनका गांव का एक सिद्धांत है कि गांव की मिट्टी गांव में, खेत का पानी खेत में।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: खेत का पानी खेत में मतलब खेतों में जो पानी गिर रहा है, यदि आप उसको रोक सकते हैं और उसको अलाउ करें, तो इससे मिट्टी का जो बहाव हो जाता है बारिश के पानी के साथ, वो भी रुकता है और पानी भी ज़मीन के अंदर जाता है। दूसरा, गाँव में बहुत सारे कुएँ हैं जो पारंपरिक जल संरचना हैं, बावड़ियाँ हैं, और अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: जिसके अंतर्गत हर गांव में नदियों का, तालाबों का, कुओं का, बावड़ियों का की सफाई, उनका संरक्षण किया जा रहा है। और ये सब हमारे बहुत ही, मतलब कहना चाहिए, समृद्ध जल, पारंपरिक जल संरचनाएं हैं जो आज भी बहुत उपयोगी हैं, और इनको समाज को, सरकार को मिलकर के अगर हम इन जल संरचनाओं को बचाएंगे, तो हमारी पानी की चुनौती का जो संकट है, वो एक बहुत हद तक हम उसको समाधान कर सकते हैं।
1: जल संचयन के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दे रहे थे इपको के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी श्री लोकेन ठक्कर जी। दोस्तों, पानी हमारी जिंदगी की अहम जरूरत है, जीने का आधार है। इसका संचयन करें, सहेजें, इसका संरक्षण करें।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, अब हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बातें कभी केवल सुनने को मिलती थी, आज वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। क्या है इसका महत्व, क्या है ये टूल, बता रहे हैं श्री राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ मध्य प्रदेश।
1: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनली किसी प्रकार के स्क्रिप्ट के लिए, किसी प्रकार के फिल्म मेकिंग के लिए, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए, किसी जॉब के लिए, तमाम तरीके से अपने मटेरियल को तैयार करने के लिए, और जैसे उतने का एक पहले एक हम अपने को प्रेजेंटेशन को और कैसे अट्रैक्ट बनाएं, इसलिए इस टूल के रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है।
0: तो ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है?
1: निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका जो जॉब है, जैसे होता है ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जॉब है या अन्य किसी प्रकार का जॉब है, हर तरीके से हर पहलू पर यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका अगर पॉजिटिव सेंस में लें तो ये हमारे लिए मददगार है।
0: तो सर, इसके प्रमुख उपयोग क्षेत्र कौन कौन से आते हैं?
1: देखिए, इसके उपयोग के क्षेत्र में यदि देखें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं बचा जो इससे एक तरह से कहा जाए कि जो इससे टच ना हो।
0: तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है?
1: शिक्षा के क्षेत्र में यदि व्यक्तियों को उनकी भाषा में, जैसे बुंदेलखंडी की भाषा में अगर हमें उनको बच्चों को बताना है तो एआई के थ्रू इस तरह के टूल उपयोग करके हम जो व्यक्ति टीचर बोल रहा है कि वो अपनी भाषा में, लेकिन बच्चों को समझ में आएगा पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में, अगर वो बुंदेलखंड के हैं, बघेलखंड के हैं या किसी ट्राइबल बेल्ट के हैं, उनको उनकी भाषा में यदि बताया जाएगा तो ये एआई एक ऐसा टूल है जो उनको सामने वाले को अपनत्व के साथ में समझ में आएगा कि हमारा टीचर हमारी भाषा में हमको समझा रहा है।
0: तो ये इसके उपयोग से कौन कौन सी नैतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं?
1: निश्चित रूप से कई बार इस तरीके के कहा जाए कि ऐसे कॉल्स जिसमें व्यक्ति को कि उसके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल फैमिली लाइफ में इस तरह के किसी को और ये नैतिक तरह दृष्टि से देखें तो कई बार इस तरह की चुनौतियां देखने को स्पेशली पुलिस के सामने आई हैं, जिसमें किसी को परेशान करने के लिए किसी की आवाज़ में उसकी पत्नी के पास किसी का कॉल भेज देना, इस तरीके के कई सारे जो कन्वर्सेशन शो करना जबकि उसकी वाइफ की ऐसी आवाज़ नहीं है, उसकी मंगेतर की ऐसी आवाज़ नहीं, उसकी बहन की ऐसी आवाज़ नहीं, मानी फैमिली में इस तरह के कुछ कंटेंट भेज देना जिससे वो लेडी कहीं ना कहीं परेशान हो।
0: सर, इसका इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: निश्चित रूप से जो भी एआई का उपयोग करते हैं यदि वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके

0: लिए कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब भी कोई इलिसिट, जब भी कोई किसी के क्रिमिनल कंटेंट के साथ यानी कि मैलाफाइड इंटेंशन के साथ कुछ भी किसी के फोटो के साथ, किसी के वीडियो के साथ, किसी के वॉइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ की, तो आईटी एक्ट का भी अपराध है। इसके अलावा वर्तमान में जो वीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत भी वो दंडित होगा।
1: तो सर, इसके भविष्य को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं, क्या कहना चाहेंगे?
0: निश्चित रूप से आने वाला समय, चूंकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, तो एआई से अछूते नहीं रह सकते, मगर हम अपने काम में किसी को इस तरीके से परेशान करने की नीयत से जब भी हम किसी तरह के इस तरह के टूल का उपयोग करना का अगर प्रयास किया, तो आपके विरुद्ध आईटी एक्ट का या आपके विरुद्ध बीएनएस का केस बन सकता है। इसलिए जब भी करें, हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हम उसके जो सकारात्मक पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम उपयोग करेंगे, तो हमारे प्रोफेशनली निश्चित रूप से हम शॉर्ट टाइम में एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
1: तो सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों से, जो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं?
0: सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा इसको लेकर के एक गाइडलाइन जारी हुई, फरवरी 2026 में ही जारी की है। वो आईटी एक्ट के तारतम्य में ही इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइंस थी उसी के तारतम्य में की है कि एथिक्स के कोड क्या हो, यदि किसी ने उनका वायलेशन किया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कृपया एआई का मिसयूज करने का कभी कोई प्रयास ना करें। एआई का हम अपने लाइफ में, हम अपने जॉब में, हमने सोसाइटी में, अपने सिस्टम में पॉजिटिव अगर सेंस में अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा।
2: एआई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे थे श्री राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, हम भी यही कहेंगे कि इसका उपयोग सोच समझ कर सकारात्मक दिशा में ही करें, ऐसा ना करें कि किसी की नाराजगी की वजह बने, कोई खफा हो।

0: और दोस्तों इस गीत के साथ इजाजत चाहेंगे, आपसे इजाजत दीजिए, अपनी दोस्त हमीदा को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है। सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों,

0: महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थी

0: विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसे लेकर आज आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए तो जिंदगी कैसी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल बेरंग और नीरस, है ना साथियों। रंग हमारे जीवन का वो खूबसूरत हिस्सा है जो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। रंग ना सिर्फ हमारी आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि ये हमारी भावनाओं, मानसिक स्थिति और विचारों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। इसीलिए आज कार्यक्रम में बात रंगों की, तो जानिए जीवन के इस खूबसूरत रंगों और उनकी अनूठी विशेषताओं को करीब से।

ऊर्जा और साहस के प्रतीक लाल रंग की। इसकी लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है लाल रंग की। इसकी दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ लाल रंग प्यार और उत्सव का एहसास कराता है, वहीं दूसरी तरफ ये तुरंत ध्यान खींचने की अपनी क्षमता के कारण चेतावनी या क्रोध को भी व्यक्त करता है। और इसकी यही विशेषता, यही विरोधाभास इसे सबसे शक्तिशाली रंगों में से एक बनाता है। लाल रंग उत्साह, ऊर्जा, पैशन और साहस का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इसे सौभाग्य और मंगल का रंग माना जाता है, इसलिए विवाह और शुभ कार्यों में सबसे ज्यादा उपयोग होता है लाल रंग का। अगर इसके भावनात्मक असर की हम बात करें तो ये आत्मविश्वास जगाता है, लेकिन इसकी अति कभी कभी आक्रामकता और गुस्से को भी दर्शा जाती है।

और श्रोताओं, रंगों की बात में अब बात विशाल आकाश और असीम समंदर के रंग की। जी हाँ, नीले रंग की। नीला रंग एक ऐसा रंग है जो आंखों को सबसे ज्यादा सुकून और स्थिरता देता है। नीला रंग शांति, विश्वास, वफादारी और बुद्धिमानी को दर्शाता है। वैसे इसे प्रोफेशनल रंग भी माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगों में नीले रंग का इस्तेमाल करती हैं। ये रंग मन के तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और विचारों में ठहराव लाता है। तो सोचिए कितना प्यारा है ये रंग।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसमें बातें हो रही हैं रंगों की। श्रोता जानते हैं, खुशी और सकारात्मकता जिसका आधार है वो कौन सा रंग है? जी, वो है पीला रंग। सूरज की पहली किरण का ये रंग जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लेकर आता है, जो सीधा हमारे दिमाग को सक्रिय करता है। पीला रंग प्रसन्नता, आशावाद, बुद्धिमत्ता और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये रंग क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। भारतीय परंपरा में इसे ज्ञान और पवित्रता से भी जोड़ा जाता है और इसका भावनात्मक असर अगर हम देखें तो ये डिप्रेशन या उदासी को दूर कर मन में उत्साह भरता है।

श्रोताओं, लाल और पीले रंग के मेल से बने एक बेहद ही खूबसूरत और मिलनसार स्वभाव का रंग होता है, वो है नारंगी रंग यानी गेरुआ रंग। और इस रंग की विशेषता ये है कि ये उत्साह, सामाजिकता, क्रिएटिविटी और गर्मजोशी का प्रतीक है। ये रंग हमें लोगों से जुड़ने और खुलकर जीने की प्रेरणा देता है।

गेरुए यानी नारंगी रंग के बाद सीधे तौर पर प्रकृति, हरियाली और जीवन से जुड़ा हुआ जो रंग है, बात उसकी, जी हाँ, बात हरे रंग की। ये रंग विकास और संतुलन का रंग है। ये रंग समृद्धि, अच्छी सेहत, ताजगी और शांति का भी प्रतीक है। आंखों के लिए सबसे आरामदायक रंग जिसे माना जाता है वो है हरा रंग, और हरा रंग मानसिक थकान को भी दूर करता है, प्रकृति से जोड़ता है, हमें सुरक्षित रखता है और रिलैक्स महसूस कराता है।

श्रोताओं, रंग सिर्फ कैनवास या दीवारों पर लगाने के लिए नहीं होते, ये हमारे भीतर की भावनाओं का आईना है। हर रंग की अपनी एक भाषा है, अपनी एक वाइब्स है। जब हम इन रंगों की विशेषताओं को समझकर इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का कैनवास और भी खूबसूरत और संतुलित हो जाता है। और इसी के साथ ही रंगों की बातों के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा यहीं समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश भर में अग्रणी है। उन्होंने कल भोपाल में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह में कहा कि प्रदेश केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई माह में शुरू करने का प्रस्ताव है। और जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में कव्वाली गायन के संपादित अंश। कलाकार हैं मुनव्वर मासूम और साथी।
1: तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मुनव्वर मासूम और साथियों का।
2: प्रोग्राम का आगाज जिस कलाम से हम पेश कर रहे हैं

0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: बहुत शुक्रिया आपका। और सुरों की ये मौसिकी की ये महफिल यूं ही सजाना है ताकि संगीत का ये उत्कर्ष हम सब के मन में हमेशा हमेशा बसा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में कव्वाली गायन के संपादित अंश। कलाकार थे मुनव्वर मासूम और साथी, संगतकर्ता थे सिंथेसाइजर कीबोर्ड पर शाहिद खान, तबले पर आसिफ लतीफ और ढोलक पर सागिर। सहगायक कलाकार थे माजिद लतीफ और मोहम्मद शादाब। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इसके अंतर्गत सुनिए हिंदी में आत्मकथा लेखन, इस विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा।
5: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आत्मकथा लेखन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार

0: श्री रमाकांत श्रीवास्तव और उतने ही वरिष्ठ कथाकार श्री शशांक। शशांक जी और रमाकांत जी, हिंदी में आत्मकथाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी एक आत्मकथा याद आती है, बल्कि आज तक जो प्रसिद्ध है, और वो मूलतः हिंदी में नहीं लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने सत्य के प्रयोग शीर्षक उपशीर्षक दिया था। सत्य के प्रयोग शीर्षक देने के पीछे गांधी जी की जो भी मंशा रही हो, वो उनकी आत्मकथा को पढ़कर और स्पष्ट होते जाता है। लेकिन क्या आत्मकथा में झूठ भी लिखा जाता है? एक प्रश्न तो ये है जिस पर हम लोग विचार करेंगे, और दूसरी बात यह है कि जब हिंदी में कहानियाँ, उपन्यास और किसी भी भाषा में लिखे ही जाते हैं गद्य में, फिर आत्मकथाओं की ज़रूरत क्यों होती है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि इधर जो आत्मकथाओं का एक नया दौर शुरू हुआ है, तो इससे क्या साहित्य की श्रीवृद्धि होती है, और किस तरह से ये आत्मकथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती जाती हैं? मैं रमाकांत जी से जानना चाहूँगा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं।
1: राजेंद्र, जहाँ तक सवाल है कि आत्मकथा में क्या झूठ लिखा जाता है, लिखा जाता है तो मैं नहीं कहूँगा, लिखा जा सकता है, अगर कोई झूठ लिखना चाहे तो कौन रोक लेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे सामने विश्व की अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में और फिर हिंदी में भी जो भी आत्मकथाएँ आई हैं, उनमें कई आत्मकथाएँ ऐसी हैं जो हमें उस समय की, मतलब पूरे परिदृश्य को सामने रखने की कोशिश लेखक के द्वारा की गई है, ऐसी आत्मकथाएँ हैं। अगर हम हिंदी में आत्मकथाओं के दौर की बात करें तो पहले तो सबसे पहले जो नाम याद आता है लोगों को कि बच्चन ने जब आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, और अमूमन लोग उसके पहले झांक कर नहीं देखते। लेकिन बच्चन जी की उस आत्मकथा के पहले भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गई हैं। हम राहुल जी को ना भूलें, मेरी जीवन यात्रा, और बहुत महत्वपूर्ण उसमें सूचनाएं हैं, पूरा काल उस वक्त का उभर कर सामने आता है। उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर जी, ये एक हिंदी में एक विशिष्ट आत्मकथा इसे मानता हूँ। श्याम सुंदर दास ने भी लिखी, लेकिन मुझे याद नहीं है उसका नाम। तो बच्चन जी के पहले भी आत्मकथाएं लिखी गई, और फिर रांगे राघव हैं, अभी अभी मिथिलेश्वर की आत्मकथा आई हुई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आत्मकथाओं में नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो आत्मकथा है, मैं समझता हूँ कि सच बोलने का एक दावा लेखक उसमें निश्चित रूप से कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि शशांक जी सहमत होंगे इस बात से।
0: शशांक जी, मैं एक बात में जोड़ना चाहूँगा कि अभी बच्चन जी की आत्मकथा का जिक्र रमाकांत जी ने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और दश द्वार से सोपान तक, एक क्रम है। लेकिन बच्चन जी के जीवित रहते ही, और बच्चन जी ने चूंकि अपने ही जीवन के बारे में लिखा और उनका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन भी है और उसके बारे में उन्होंने लिखा, तो बच्चन जी की आत्मकथा बच्चन जी के रहते ही विवादास्पद भी हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि ये घटनाएं इस तरह की नहीं हैं जैसी बच्चन जी ने लिखी हैं, तो मैं इस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आत्मकथा इतिहास नहीं होती, वो थोड़ा आत्मविवरण भी होती है और आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार की भी एक चीज़ होती है। तो जो अनुभव और जो साक्षात्कार उन परिस्थितियों में, उन घटनाओं से बच्चन जी को हुए, हो सकता है कि वो सामने किसी अन्य को पता ना हो। इसी से सवाल उठता है कि क्या उन्हीं घटनाओं को आत्मकथा में हम औपन्यासिकता की दृष्टि से भी परख सकते हैं?
2: देखिए राजन जी, आपने गांधी जी के सत्य के प्रयोग की बात कही थी। गांधी जी ने

शुरुआत में ही सत्य के प्रयोग में ये कहा कि मेरे समान अनेकों का जय चाहे हो पर सत्य की जय हो। आत्मा को नापने के लिए सत्य का गज कभी छोटा ना बने। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उस गज का इस्तेमाल किया है जो आत्मा को छोटा ना बनने दे। यह सच की उनकी अपनी परिभाषा थी, मगर जब हमारे यहाँ जब हम अपनी हिंदी की आत्मकथाओं की बात करते हैं, ये आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में हिंदी अनुवाद में बहुत सारी रचनाएं आती हैं। हेलन केलर की हमारे यहाँ सबसे बड़ी आत्मकथा चली, खुद गांधी जी की आत्मकथा हुई, अनेकों अनुवाद हमारे यहाँ बंगला से हुए, मराठी से हुए।

0: लिखे जाने की आत्मकथाओं की यदि आप देखें तो उसकी मात्रा, उसका परिमाण जो है वो कम होता है। इसके कारणों पे जाना चाहते हैं और उन कारणों पर यदि हम जाएं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद उस बारे में क्या कहते हैं। दरअसल सब लोग चाहते थे कि प्रेमचंद जो बहुत ज़्यादा लिखते थे कि वो कुछ ना कुछ तो आत्मकथाओं के बारे में दृष्टिपात करते, प्रयत्न करते। यह हमारी बातचीत के लिए एक सूत्र वाक्य हो सकता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गढ़े तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। दरअसल हमारे अंदर एक बात ये रहती है कि हम जब किसी के जीवन में झांकें तो उसमें उसके ऐसे प्रसंग मिलें जो बहुत निजी हों। मैं मार्क्वेज़ के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हर व्यक्ति का जीवन तीन तरह से होता है। एक होता है पब्लिक यानि सार्वजनिक जीवन होता है, दूसरा होता है प्राइवेट यानि व्यक्तिगत जीवन होता है, और तीसरा होता है सीक्रेट जीवन, वह जीवन जो आपके परिवार को भी नहीं मालूम होता। दरअसल जो आप किसी को नहीं बताते वह सीक्रेट जीवन के लिए एक पाठक आवागमन का प्रयत्नशील होता है, और इसके लिए किस में कितनी हिम्मत है ये देखने की बात है। मैं चाहूँगा ये बताना कि उग्र ने जो अपनी खबर लिखा वह मैं समझता हूँ कि आत्मकथा की शुरुआत होती है
1: वहाँ से,
0: और उसमें यदि आप शुरुआत से ही उसे देखें तो उनने लगभग आधा, बहुत छोटी सी किताब है वो आत्मकथा, बहुत बड़ी नहीं है, मगर वो कैसे उनके बदचलन भाइयों ने उनको बदचलन बनाया, कैसे रामलीला में काम करने वाले लोग बदमाश होते हैं और उनका जीवन बर्बाद किया। मगर एक खूबसूरती है कि वहाँ से एक लड़का 19-20 साल का निकलता है और पराड़ कर उनकी रचनाओं को ठीक करके और उस में देते हैं
1: आज में देते हैं
0: और आप देखेंगे कि अंत में जाकर निराला से बातचीत होती है मतवाला के ऑफिस में, तो वो किसी से मारपीट तक करते हैं एक प्रकाशक से, और उसके लिए सेठ से, जो मतवाला के
1: महादेव भाई
0: जी, तो सेठ जी से वो ये कहते हैं उग्र कि निराला ही नहीं, क्योंकि निराला को निकाल दिया गया, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तब निराला ने कहा कि यहाँ केवल एक ही मर्द है, वो उग्र जी। तो आत्मकथा आपको ये बतलाती है जो संभवतः आपके जीवन का, साहित्य का एक इतिहास आपको देती है। मगर इस बात को हम लोग आगे करेंगे और इस बात पे देखेंगे, मगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजेंद्र जी, कि राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है मुड़ कर देखता हूँ, हर लेखक जब अपना आत्मकथा लिखता है तो उसके टारगेट भी होते हैं, उसमें राजेंद्र यादव के टारगेट थे, उसमें एक खास किस्म का रस और लास्य दिखाने की प्रयत्न भी रहे रमाकांत जी। मगर जब मन्नू भंडारी ये कहती हैं कि मुझे, उन्होंने फिर एक कहानी यह भी कर आत्मकथा लिखी, और यहाँ इस बात के लिए समीचीन होगा जब उन्होंने कहा कि यह जो एक कहानी यह भी है वह लोकप्रिय लेखकीय कथा यात्रा और आत्मकथा का घाल मेल है, और मुझे ये इसलिए करना पड़ा कि राजेंद्र यादव ने स्त्री प्रसंगों को एक तरफा लिखा है और मैं दूसरा सच भी पेश करना चाहती
1: हूँ। हाँ नहीं, मैं शशांक आपकी बात से एक दिलचस्प बात मुझे याद आई। हेमिंग्वे ने अपने किसी साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि आप आत्मकथा कभी लिखेंगे, क्योंकि हेमिंग्वे का जीवन बहुत उबड़ खाबड़ था और उसमें कई घटनाएं हैं, लेकिन हेमिंग्वे ने फौरन कहा, और वो वाक्य मुझे अभी तक याद है, उसमें हेमिंग्वे ने कहा, ना बाबा ना, आत्मकथा यानी झूठ का पुलिंदा।
0: ये बड़ी तो, आश्चर्य की बात है राजन जी, कि हेमिंग्वे ने आत्महत्या क्यों की, इसलिए कि उनको लगा कि उनका पौरुष उनके जीवन में और उनके साहित्य में चुक गया है। ऐसे बहुत कम लेखक होंगे जिसे वो एक अपनी मर्दानगी को और अपने लेखकी मर्दानगी को अपने जीवन के लिए चुनौती मानते हैं।
2: एक बात ये है राजेंद्र जी, जो शशांक कह रहे थे उस बात को मैं थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है ये अभी तक भी एक ऐसा बंद समाज है जहाँ बहुत खुल कर बातचीत करना आज भी खतरे से खाली नहीं है। हमें याद है कि जब

0: एक हमारे बड़े पत्रकार ने अपने अनुभव जीवन के जो बस्तर में रहते हुए उन्हें प्राप्त हुए वो लिखे तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमारा समाज आज भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने तो आत्मकथा विशेषांक भी निकाला। प्रसाद जी से जब उन्होंने कहा तो उनकी प्रसाद जी ने कविता लिख के भेजी। हाँ, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी आत्मकथा, सुनकर तुम क्या करोगे मेरी भूली आत्मव्यथा, ऐसा कुछ है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण है हमारे समाज में कि आत्मकथाओं का लेखन तब ज़्यादा शुरू हुआ जब मराठी के कलम से प्रभावित होकर हमारे यहाँ भी विमर्श शुरू हुआ। और साथ ही स्त्री का जो सशक्तिकरण हुआ, औरत में जब ये हिम्मत आई या ये जब साहित्य में प्रचलित हुआ कि स्त्री अपनी व्यथा को स्वयं कहे, सहानुभूति का साहित्य नहीं चाहिए, स्वानुभूति का साहित्य चाहिए, तब हम देखते हैं कि जूठन जैसी आत्मकथा आई,
1: अद्भुत है,
0: वाल्मीकि की, मेरा बचपन मेरे कंधे पर शिवराज सिंह की आई, और मैं समझता हूँ मुर्दहिया, ये तो अपने आप में अपूर्व है। स्त्रियों ने जब लिखा, अपने विषय में लिखा, कुछ तो ऐसी किताबें हैं जिनके नाम मैं भी भूल गया हूँ और अक्सर याद नहीं किया जाता, चंद्रकिरण सोनरेखा, मन्नू भंडारी का तो बताया आपने, मैत्रेयी पुष्पा की किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, गुड़िया भीतर गुड़िया। तो क्या है कि स्त्रियों ने जब अपने विषय में लिखना शुरू किया तो उन्होंने भी कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के भय और संशय को थोड़ा बढ़ा कर लिखा, और उसकी वजह यह है कि हमारे समाज में उस तरह का भय उनके अंदर मौजूद था। तो स्त्रियों ने जो लेखन किया उसमें मैं एक दूसरा वर्ग शशांक की करता हूँ, देखिए आप उससे सहमत हो ना हो, हम अक्सर लेखकों की, साहित्यकारों की आत्मकथाओं की बातचीत करते हैं। अभी शुरू में जो आलू आधारी की बात आपने की, एक बर्तन मलने वाली लड़की, बचपन में जिसकी शादी कर दी गई, उसके अंदर जब पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो प्रबोध कुमार जी ने, मतलब उसकी तरफ से लिखा, बंगला में उसका वर्षन बाद में आया है। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, अशोक सेक्सरिया की ड्राइवर की पत्नी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। वो पढ़ना नहीं जानती थी, अशोक सेक्सरिया जी ने उनको प्रेरित किया कि आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके पति ने भी उसको प्रोत्साहित किया और वो आत्मकथा उन्होंने लिखी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आत्मकथाओं का भी एक संसार है जिस पर हम फिर और बातचीत कर लेंगे।
2: रमाकांत जी, ऐसा है कि आत्मकथाओं के बारे में साहित्यकारों की बहुत अच्छी राय नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद मिश्र आत्मकथाओं के बारे में क्या कहते हैं, और संभवतया ये लगभग बहुत सारे लेखकों के लिए भी ये संभव हो सकता है। मैंने प्रेमचंद के बारे में आपको बताया कि यदि जीवन में संघर्ष एक उबड़ खाबड़ नहीं हो तो वो आत्मकथा का आनंद नहीं होता, मगर यदि गोविंद मिश्र यदि ये कहें कि साहित्यकार इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि उनके उतार पर उनकी विशेष विधाओं में लिखना कम होता चला जाता है, जब उतार आपका जब होने लगता है और उसमें जिसमें आपको महारत हासिल थी, और तब आप सीधे सीधे अपनी कहानी लिखते चले जाते हैं, आत्मकथा लिखते हैं और साहित्यकार होने का भ्रम बनाए रखते हैं।
0: आप इससे सहमत हैं क्या?
2: मैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ठीक बात है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप लेखक हैं शुरुआती दौर में, केवल एक सहमत असहमत की बात इसमें नहीं है, इसमें वह चीज़ देखनी होगी कि आखिर आप चाहते क्या हैं एक पाठक के रूप में, और लेखक क्या दे रहा है, तब ये लेखक का यह एक जो वर्जन है, यह जो एक उनकी तरफ से दी गई एक दलील है, ये भी गलत नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भीमबेटका है, वहाँ हजारों साल पहले लोगों ने अपने चित्रों से अपने जीवन की आत्मकथा रेखा चित्रों से पेश की। और उसके बाद यदि आप कहें तो मैं जगदलपुर में रहा हूँ, और उस जगदलपुर में आदिवासी अपनी मृत्यु के बाद कब्र पर एक सागौन का एक 6 फीट का लगा देते हैं,

0: हम उस सर्कल उसे वे लोग कहते हैं, और उसमें देखिए आप तो बड़ा आनंद आपको आएगा कि उसमें काला चश्मा, छतरी, एक शेर, या उसने जीवन में जो भी कुछ किया है वह उस पे आकृतियों में दिया है। जिनके पास भाषा नहीं होती तो वे आकृतियों से अपनी बात करते हैं। हमारे पास भाषा है मगर हम अपनी भाषा में ही अपनी चीज़ों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा ये पूरे विश्व साहित्य में कहा गया कि फ्रेंच महिलाएं सबसे ज़्यादा आत्मकथाएं लिखती हैं। एक ना एक आत्मकथा फ्रेंच महिला लिखती है और अनेकों फ्रेंच महिलाओं की कथाएं छपती हैं जो आत्मकथा की हैं। मगर जो हमारे यहाँ लेखक या लेखिकाएं लिखते हैं, मैं उसमें एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारे साहित्य में हमेशा कोई ना कोई एक विचार साहित्य के लिए प्रेरणा और स्तंभ के रूप में होता है। स्वतंत्रता के पहले का आप देख लीजिए तो आज़ादी, गांधीवाद, मार्क्सवाद, फिर फ्राइडियन, इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा। मगर जैसे ही ग्लासनोस्ट की समाप्ति के बाद, खुलेपन के बाद, आपके पास जब मार्क्स की विचारधारा नहीं रही खास तौर पे साहित्य में, तो महिला विमर्श जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। आप देखिए हर साहित्यिक पत्रिका के आपको अंक इसी पर ही मिलेंगे। और इससे हुआ ये है कि यदि एक स्त्री को पुरुष से अलग हटना है तो उसे पुरुष के कहीं ना कहीं उन सारे विचारों के बरक्स प्रतिरोध में खड़े होना है। हर समय थोड़ी प्रतिरोध होता
1: हाँ,
0: है ना।
1: सही कह
0: और
1: रहे हैं।
0: इसलिए यदि आप देखें तो प्रभा खेदान की अन्या से अनन्या, वह किताब लोगों के बीच में क्या हुई, उसमें जो जो उनके पुरुष प्रसंग थे, या खुद मनु भंडारी की आत्मकथा के बारे में भी है कि यदि आपको चीज़ रुचती नहीं है तो क्या आप उसमें फायदे के लिए लगी रहीं या आप उसके प्रतिरोध में बाद में क्यों आईं, यह एक प्रश्न आता है। और फिर यहाँ हम जाते हैं राजेंद्र जी की बात पर कि जहाँ पर आप किसी चीज़ में संतुलन नहीं है, आप किसी से पक्षपात पूर्ण विचार रखते हैं, तो वह आत्मकथा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती है।
1: आपकी इस वो एक कृति से की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अनन्या से अनन्या को पढ़ते वक्त लगातार मुझे ये लगता रहा कि क्या हम अपनी ही गलतियों को और ग्लोरीफाई करें, ऐसा तो नहीं है कहीं उस आत्मकथा में, जो कि मुझे बार बार लगता था। मैं राजेंद्र जी एक ये बात कहना चाहता हूँ कि साहित्यकारों से अलग हटके जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं उससे हमारे संसार के बहुत से कोने उजागर होते हैं।
0: जी
1: कुछ किताबें जो मैंने देखी हैं उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे पत्रकार है वो अपने ढंग से दुनिया को देखता है, यही मायाराम जी ने जो
0: हाँ
1: आत्मकथा लिखी धूप छाया के दिन, कांति कुमार जैन ने जो लिखा बैकुंठपुर से मैं बचपन, अभी एक आत्मकथा मैंने पढ़ी इंदिरा मिश्रा मेरे मेरे जीवन का
0: प्रशासन
1: प्रशासनिक काल। तो वो एक अपने ढंग की एक सूचनाओं से हमें वाकिफ कराता है। लीना मेहंदेले की किताब आई है एक, मेरी प्रांत साहबी के दिन, बलराज साहनी की आत्मकथा को जैसे हम याद करें, एक फिल्मी दुनिया का एक पूरा
0: सफरनामा, मेरी
1: जो
0: फिल्मी
1: वातावरण है, मेरी
0: आत्मकथा।
1: फिल्मी आत्मकथा ही नाम रखा उस उन्होंने। एक वैज्ञानिक हैं जानते होंगे डॉक्टर आत्माराम,
0: हाँ
1: उन्होंने आत्मकथा लिखी अपने क्षेत्र के एक सामान्य लेखक जिन्हें हम बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते, संतोष खरे जी ने एक किताब लिखी मैं छुपाना जानता गर, पूरा जो अदालती माहौल है उसमें खुल कर वो सामने सारी बातें रखते हैं और हम चमत्कृत होते हैं कि हमारी ही दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आत्मकथा लेखन का अपना एक महत्व है। और
0: रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मकथाओं का संख्या है, आत्मकथाओं की संख्या कविता और कहानी की तुलना में कम है,
1: हाँ, ये
0: जबकि
1: तो
0: ये
1: निश्चित,
0: अधिकतम
1: हाँ
0: लिखा जाना
1: ये
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: था,
1: ठीक कह रहे हैं।
0: क्योंकि ये सृजनात्मक गद्य से इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज़्यादा हो सकता था। और इसका तरीका मुझे लगा है हिंदी साहित्य में ये है, एक बात जो मैंने कही कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, और जिसे कहा जाए कि हम अपनी आत्मकथा को जहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ आपके पास पर्याप्त कंटेंट और तथ्य नहीं है।
1: शिकारी के पास
0: तो
1: होता
0: उसे कहते हैं ना।

0: किसी ने लिखा कि हजरते अकबर जहां में कुछ कारो नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए किया, हाँ, क्लर्की किए और मर गए। ऐसे से उनके पास चीज नहीं आती। तो ऐसे वक्त पर मेरे को ये लगता है कि एक नया तरीका निकाला गया, और ये नया तरीका निकला कि आप आत्मकथा की बजाय संस्मरण लिखें। बल्कि मैं एक कैटलॉग देख रहा था किसी का कि आत्मकथात्मक नुमा संस्मरण, ये उनकी हेडिंग है। और इसमें यदि आप देखें तो इसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ। और यदि इस तरह के कामों को देखें तो आपने देखा होगा कि सारिका ने गर्दिश के दिन एक शीर्षक शुरू किया, किताबें हुई, और स्वयं प्रकाश की किताब भी, इसे भी हम आत्मकथा ही मानेंगे, हम सफरनामा, जिसमें उन्होंने अपने और अपने लेखों के बारे में किया। और रमाकांत जी, मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत यदि एक तरफ हम अपनी खबर से करते हैं तो दूसरी तरफ हम महादेवी वर्मा की तीन किताबों का नाम,
1: अतीत के चलचित्र,
0: स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। और ये पहली बार हुआ कि एक स्त्री का आपको मन दिखाई पड़ता है इन तीनों किताबों में, और एक स्त्री मन आपको एक आत्मकथा के रूप में सामने लाती है, जिसमें आप निराला के भव्यता को भी देखते हैं, तो एक छोटे से पिल्ले को, कुत्ते को,
2: जानवरों को,
0: जानवरों को, तो ये भी तो आपके
2: घर में काम करने वाली
1: एक, एक महत्वपूर्ण किताब का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, शशांक, भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है
0: जी, हाँ,
1: आज का अतीत
0: जी,
1: ये उसका शीर्षक ही बहुत व्यंजनात्मक, उसकी व्यंजनाएं बहुत हैं
0: जी, हाँ,
1: है ना। आज का अतीत लिखना तो मुझे अतीत के बारे में है जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे आज लिखना है उसे,
0: आज,
1: और आज आज लिखते हुए मैं उसको कैसे देखता हूँ, और उस अतीत ने मेरे आज को कैसे प्रभावित कैसे? किया है। जैसे हम पाब्लो नेरुदा के मेमोयर्स की हम बात करें, है ना, या हम गोर्की की जो,
2: हाँ, जो
1: तीन किताबें हैं, मेरा बचपन,
0: मेरा विद्यालय,
2: मेरे विश्वविद्यालय,
1: मेरे विश्वविद्यालय, है ना, जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय, ये ये ये चीज़ों को समग्रता में देखने की बात करते हैं। उसमें उसमें उस आत्मकथा में स्त्रियां भी आती हैं, स्त्रियों का विमर्श भी आता है, और जो आत्मकथा लेखक है वह भी आता है।
0: मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँगा, हाँ, कि आत्मकथात्मक में एक हम बात कर सकते हैं कि जो आत्मकथा का समय यदि लिखे जाने में नहीं है तो वह डायरी और संस्मरण, ये दो के बारे में है, और उन्हें दो हिस्से में लिखा जा सकता है। जैसे कांति कुमार जैन ने कहा कि दूसरों के बारे में लिखा, तो वो भी उनका एक आत्मकथा का हिस्सा हो सकता है, जो अपने साथ बिताए क्षणों के बारे में।
2: लेकिन वो आत्मकथा को सहायता भर करता है, पर मेरे ख्याल से वो संस्मरण और आत्मकथा में एक एक थ्रेड तो है,
0: एक अपने समय के इतिहास को लिखता है, और अंततः आप अपने उस जीवन में प्रवेश करते हैं जहां आपका प्रिय लेखक क्या कर रहा है ये जानते हैं। इसके लिए मैं आखिरी में, हालांकि वो हमारे यहाँ के नहीं हैं, मार्क शगाल एक बहुत बड़ा पेंटर रहा है, उसकी आत्मकथा है, उसका हिंदी अनुवाद अखिलेश ने बहुत अच्छा किया है, उसके 5 लाइनों से इसकी पकड़ अपने को महसूस होती है। अपनी माँ के बारे में लिखता है, कोई शब्द नहीं, सब कहीं मेरे भीतर है छटपटाहट, और तुम, मेरी यादें तुम्हारी, तुम्हारा फीकापन, तुम्हारे हाथों का दुबलापन, तुम्हारे सूखे अस्थि पंजर, मेरी हलक में जान कहाँ से ले आते हैं, किससे प्रार्थना करूँ।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो कुछ है मेरे भीतर है, मैं इसी भीतर को बाहर तक लाने की प्रक्रिया को हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। आज रमाकांत जी और शशांक जी, आप स्टूडियो में आए और इस पर चर्चा में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में आत्मकथा लेखन, इस विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे शशांक, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा। इसी के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन

0: जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने यह उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरी घाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरी घाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

असीमित चाहतों को बयां करने वाला है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। श्रोताओं, अरमान कितना खूबसूरत और गहरा शब्द है ना? और जब हम दिल के अरमानों की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी इच्छाएं या ज़रूरतें नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की वो गहरी पुकार होती है जो हमें जिंदा दिली का एहसास कराती है।

श्रोताओं, हमारे दिल और मन के अरमान हमारे जीवन का हिस्सा किस तरह बनते हैं, इसे हम बहुत ही खूबसूरत पहलुओं से समझ सकते हैं। ये हमारे जीवन को दिशा और मकसद देते हैं। जी हाँ, क्योंकि अरमान हमारे जीवन के कंपास होते हैं। अगर मन में कोई चाहत, कोई ख्वाब या कोई अरमान ना हो तो जिंदगी ठहर सी जाएगी, है ना? सुबह उठने की वजह, कुछ नया सीखने की चाह या किसी मकाम तक पहुंचने की जिद, ये सब हमारे अरमान ही करते हैं, जो हमें एक मकसद देते हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सागर, जिसमें हम बातें कर रहे हैं अरमानों की। श्रोताओं, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब मन का कोई छोटा सा अरमान ही उम्मीद की किरण बनकर आता है। एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा या करूंगी, ये उम्मीद ही इंसान को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। अरमान हमारे भीतर की निराशा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। ख्वाब बनकर जो दिल में चमकते हैं, वो अरमान ही तो हैं जो जिंदगी में रंग भरते हैं। टूट भी जाए अगर रास्ते में कहीं, तो नए हौसलों से साथ फिर से उभरते हैं। और ऐसे समय में अगर कोई आपका साथ दे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो दिल बस यही कहता है।

श्रोताओं, हमारे अरमान क्या हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से इंसान कैसे हैं। किसी का अरमान दुनिया घूमने का हो सकता है, किसी का अरमान कला के क्षेत्र में नाम कमाने का, तो किसी का अरमान बस अपनों को खुश देखने का होता है। हमारे अरमान हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इंसान के दिल के अरमान ही अक्सर शायरी, कविता, पेंटिंग या संगीत के रूप में भी बाहर आते हैं। जब हम अपने अरमानों को सीधे शब्दों में नहीं कह पाते तो हमारी क्रिएटिविटी उन्हें एक खूबसूरत शक्ल दे देती है।

श्रोताओं, अरमानों के बारे में सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं। इन पर किसी और का हक या बंदिश नहीं होती। भले ही जिंदगी में सारे अरमान पूरे ना हों, लेकिन मन में अरमानों का होना ही इस बात का सबूत है कि दिल में आज भी जीने का जज्बा और जोश जिंदा है। इसीलिए अपने जीवन में अरमानों को हवा देते रहिए, बनाए रखिए, वो आते रहेंगे और आपको नए एहसास कराते रहेंगे। और अब आकांक्षा को दीजिए अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। आज इसके अंतर्गत सुनिए रामदास मुंगरे का राग भैरव में ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे रामदास मुगरे का राग भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसें 1 अगस्त से चलाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में कल हुई बैठक में इस बारे में चर्चा की गई। और नौतपा के आखिरी दिन आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज राज्य के 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। गर्मी की भीषणता में कुछ शीतलता लेकर आते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम, तो तैयार हो जाइए हमसे बातें करने और हमारी पसंद के गीत सुनने के लिए। तो लगाइए नंबर 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए आज हम आपको विषय देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे श्रृंगार के बारे में। तेरी मुस्कान से महके जीवन का हर पल, जैसे फूलों पर ठहरा हो ओस का निर्मल जल। तेरी आंखों में देखा जब प्रेम का संसार, मन में खिल उठे सहसा खुशियों के हजार। तेरा स्नेह मेरा सबसे सुंदर श्रृंगार, तुझसे ही जीवन में आया है मधुमय बहार। तो दोस्तों फोन करिएगा और हमसे बातें करिएगा इस विषय पर कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का।
3: हेलो
2: जी, आपका फोन लग चुका है। नमस्कार, बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। हेलो।

0: जी फोन करें गीत सुने।
1: जी बात आपकी गीत हमारे हैं आज सर।
0: जी बिल्कुल बात आपकी गीत हमारे। जी नमस्ते।
1: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: उज्जैन से
0: जी, जी हाँ
1: प्रेम सिंह जी।
0: जी दीदी
1: आज हमने विषय लिखा है साज श्रृंगार। महिलाएं जो श्रृंगार करती है ना उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है देखकर?
0: जी महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार के बिना महिला अधूरी होती है।
1: जी
0: लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे दिखे कि अलग हटके दिखे। हाँ महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती है और हर महिला का अधिकार भी है श्रृंगार करना, लेकिन साथ में पुरुष भी इतने मतलब तो पीछे नहीं हटते हैं ना दीदी, आपको बताऊं वो भी तैयार होते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं और मतलब किसी शादी समारोह में जाते हैं ना
1: जी,
0: तो उसी तरह से वो भी तैयार होके जाते हैं।
1: जी तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना।
0: जी बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होके जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए।
1: जी जी
0: मैं
1: तो
0: बताऊं, अब मैं कहीं शादी में जाता हूं ना तो अच्छी तरह से सज सवर के ही जाता हूं और
1: जी
0: अपने बच्चे हैं मेरे, बड़ी वाली लड़की बिंदिया है वो भी रेडी होके जाती है, उसके बाद कृष्णा है, साक्षी है, उसकी मम्मी है, मतलब हम सब तैयार होके जाते हैं ना तो
1: हाँ।
0: ऐसा बतलाया जाता है कि हमारी फैमिली सबसे अलग ही दिखती है,
1: अच्छा
0: किसी भी
1: जी
0: शादी समारोह हम सब लोग मतलब अच्छे से रेडी होके जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो है अपडेट होकर जाना और अप टू डेट होकर जाना, यानी
0: जी
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है ना।
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: आपने फोन किया, आज बात आपकी गीत हमारे हैं तो और अपनी पसंद का कोई गीत हम आपको सुनवाएंगे। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद
0: जी थैंक यू सो मच।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हाँ
0: बात आपकी गीत हमारे में, आज हमने विषय रखा है साज श्रृंगार के बारे में।
1: महिलाओं के हाँ
0: जी, महिलाएं पुरुष पुरुष भी तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो हम कैसा फील करते हैं, और हम जब कोई बहुत अच्छे से तैयार होता है, मतलब व्यवस्थित होता है,
1: जी,
0: तो कैसा लगता है हमें देखकर।
1: अब प्रमुख रूप से तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। अब पुरुषों
0: जी
1: का तो अनुभव थोड़ा सा कम रहता है।
0: जी तो अपना परिचय दे दीजिएगा पहले,
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में।
1: नमस्ते जी।
0: जी, बताइए।
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: योगेश जी, जी बताइएगा, कैसे हैं वहाँ, गर्मी कैसी हो रही है?
1: बहुत गर्मी है, 43-44 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
0: जी, तो इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि ऐसी गर्मी में यदि हमें कहीं शादी ब्याह या फंक्शन में जाना है, तो हम कैसे तैयार हों कि हम लास्ट जब लौटें तब भी उतने ही फ्रेश फ्रेश रहें।
1: बड़ा
0: जी योगेश जी,
1: उसमें काफी जो धूप होता है, पसीना आता है, तो
0: जी
1: वो काफी चैलेंजिंग होता है स्थिति को बनाए रखना।
0: जी जी जी
1: और रही बात साज श्रृंगार की, तो वो तो अपने अपने जो प्रदेश है या फिर अपने क्षेत्र
0: जी
1: हैं। हमारे यहाँ जैसे प्रमुख रूप से तो ग्रामीण परिवेश में, हमारे यहाँ ही नहीं लगभग सभी जगह
0: जी
1: साड़ी सबसे प्रमुखता होता है एक श्रृंगार के रूप में महिलाओं का।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: पुरुष जैसे हम लोग हो गए तो जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो
0: जी जी जी
1: यही चीजें बहुत आयत में चलती हैं।
0: जी
1: और श्रृंगार में तो जितना हम कर ले उतना कम लगता है।
0: जी क्योंकि 16 श्रृंगार माने गए हैं ना महिलाओं के
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो।
1: और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है
0: जी,
1: वो तो इन्हीं सब चीजों पर कह सकते हैं टिका हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी, आपको ये नहीं लगता कि आजकल लोग थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं
1: हाँ,
0: जो।
1: अब आधुनिकता है और तरह तरह की जो आजकल की जो हम आधुनिकता में जो देखते हैं,
0: जी
1: वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को भी ट्रेंड में लेते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मेल नहीं खाता है।
0: जी जी जी
1: जो
0: तो
1: पारंपरिक परिधान है
0: जी
1: और वो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम पारंपरिक रूप से तैयार होते हैं शादी ब्याह में, तो अलग ही दिखता है ना, पहचान ही नहीं आते
1: जी
0: कि अरे वो ये वही है।
1: जी जी जी धन्यवाद।
0: तो फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे आपकी सेवा में हम हैं।
1: नमस्कार मैम
0: जी।
1: जी। मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी,
1: नहीं
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: जी मैम, नमस्ते। शिवपुरी
0: जी, मोतीलाल जी कहाँ से, जगह कहाँ है आपकी?
1: जिले के रामखेड़ी मारा से मोतीलाल
0: खेड़ी
1: परियार
0: से।
1: बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, कैसे हैं मोतीलाल जी?
1: और कृपया कृपया मैम ईश्वर की और आप लोगों की।
0: जी, हम लोगों का सबका स्नेह है आपके साथ। अच्छा मोतीलाल जी, आज जैसे आपके नाम में ही

0: मोती लगा हुआ है। तो
1: जी
0: आज
1: जी
0: हम साज और श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम श्रृंगार करते हैं या बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और लोग हमें किस तरह से देखते हैं। आज हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी मैम, तो
0: बताइए, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं और जब वो निकलती हैं घर से तो कभी वेणी लगाती हैं, कभी सिंदूर, कभी बिंदी लगाती हैं, तो कैसा लगता है देखकर?
1: जी मैम, ऐसा ही है कि बढ़िया लगता है। वो जो बड़ी श्रृंगार करके जाते हैं तो मिलते जुलते हैं रिश्तेदारों में
0: जी जी
1: और
0: जी
1: बढ़िया।
0: और मोतीलाल जी, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, पता है? जब पैरों में हम पायल पहनते हैं, पहले देखा था कि बहुत मोटी मोटी पायलें पहनी जाती थी, तो
1: जी
0: जो
1: मैम, अब भी तो पहनती है ना।
0: जी तो जो पहनती है ना, उनके कमर में, पैरों में उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जो नहीं पहनती है उनको ज्यादातर शिकायत रहती है। और यदि शिकायत रहती है और वो अच्छी मोटी मोटी पायलें पहन लेते हैं, पहले तो जैसे करधोनी भी पहनी जाती थी, करधन बोलते हैं जिसको, तो
1: जी
0: ये अपनी जो स्पाइन है, अपनी रीढ़ की हड्डी, ये दबी रहती थी और ये बहुत सारे दर्द हमें नहीं होते थे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
1: मैम, क्या है वो, इसे हमारे गांव में तो सब औरतें पहनती हैं, अब भी पहनती हैं।
0: जी,
1: और जो बाजार साहब में, वो बाजार में कुछ नहीं पहनती, तो
0: हाँ
1: गांव गांव में तो अच्छी लगता है उनको पहनना।
0: जी, तो वो स्वस्थ भी
1: बिल्कुल
0: रहती हैं, आप देखिएगा, है ना?
1: स्वस्थ रहती हैं। वे
0: बिल्कुल,
1: तो उनका शौक ही यही है मैडम, श्रृंगार उनका।
0: हाँ। तो देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, है ना? तो पहले तो
1: जी।
0: गले में हंसली और ये सारी चीजें पहनी जाती थी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोतीलाल जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए,
1: जी मैम,
0: और
1: नमस्ते।
0: सुनते रहिएगा आकाशवाणी।

0: हेलो
1: जी, बात
0: जी, नमस्कार।
1: आपके बीच हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है
1: जी
0: कि आज बात आपकी गीत हमारे होना है। जी
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल याद है।
0: रखते
1: नियमित श्रोता हूँ इसलिए याद रहता भी है और
0: हैं,
1: रखना भी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो आज मैं आपका परिचय जानने से पहले विषय बता देते हैं। आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात करेंगे आपसे। अब अपना परिचय दे दीजिएगा मुझे।
1: जी, मैं रानी दलैया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैं।
0: रशीद अहमद जी, हाँ, छतरपुर से
1: जी, छतरपुर से। जी,
0: जी, बताइए रशीद जी।
1: साज और श्रृंगार मतलब ये
0: 16 श्रृंगार होता
1: जी
0: है ना, जो हम बेड़ी लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी महावर लगाते, मेहंदी लगाते, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं
1: अच्छा।
0: जी।
1: मैं श्रृंगार तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा श्रृंगार तो आपका सादगी और आपका चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार
0: जी जी जी
1: है
0: जी
1: ना। सारी चीजें अपन लोग करते हैं ठीक है, लेकिन
0: जी
1: सबसे बड़ा जो है वो तो आपका उसमें झलकना चाहिए आपके किरदार से, है
0: अरे वाह वाह जी, यही तो हम चाह
1: ना।
0: रहे थे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो कि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो जाएं उससे। जी
1: जी, है ना।
0: तो
1: बाकी बाहरी रूप रंग तो ठीक है, आदमी को अपना मेंटेन करना चाहिए, है ना।
0: जी
1: ईश्वर के दिया हुआ रूप रंग होता
0: जी जी
1: है ना,
0: जी
1: जो जैसा है उसको अपन वैसा स्वीकार करें और उसको अपन थोड़ा बहुत मेंटेन भी किए रहे वक्त
0: हाँ
1: के हिसाब से, है
0: जी जी जी
1: ना। जैसे धूप पड़ रही है तो उसमें अपनी सुरक्षा रखें अपन, या बारिश में इधर उधर जहाँ जैसा भी है,
0: जी। अब जैसे
1: लड़की
0: कोई
1: है ये
0: घर
1: है
0: में
1: वो
0: कोई
1: है। हाँ
0: फंक्शन होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है ना।
1: नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए,
0: हाँ
1: वो करना चाहिए वक्त
0: हाँ
1: की डिमांड के हिसाब से, वो
0: जी
1: चीज
0: जी
1: अच्छी भी
0: जी जी
1: है ना, करना चाहिए। लेकिन इतना मतलब ओवर भी ना हो जाए, मेकअप के स्किन को भी नुकसान हो, या कोई
0: हाँ
1: मतलब वैसे लोग कमेंट्स करें कोई, है ना,
0: जी।
1: ये है तो, है
0: आज
1: ना।
0: इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए, उसका भी हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए ना।
1: जी, मतलब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इफेक्टिव हैं,
0: जी वही वही
1: है ना।
0: वही
1: बिल्कुल,
0: आज का,
1: बाकी चीजें
0: आज
1: मैं
0: आज इस बात आपकी गीत हमारे में ये विषय लेने का यही मतलब है मेरा, कि हम अंधाधुंध या जो हम देख लेते हैं इधर के विज्ञापन में इसमें, उसके हिसाब से ना जाकर बहुत प्रैक्टिकली सोचें और फिर अपने ऊपर यूज करें उस सब सामान
1: बिल्कुल
0: का।
1: जो चीज अपन को सूट कर रही है उसी को यूज करें, और ज्यादातर ये हो कि हर्बल अपन यूज करें, है
0: जी।
1: ना, तो ज्यादा अच्छा है उसमें।
0: अब श्रृंगार में देखिए उबटन है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि घर का ही उबटन करें, बेसन ले लें और चावल
1: जी जी
0: दाल
1: जी
0: का
1: जी
0: निकाल
1: बिल्कुल
0: के, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दही
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कह रहे हैं
0: और फ्रूट्स
1: जी।
0: हैं, इस हिसाब से करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे और कोई नुकसान भी नहीं है इससे।
1: जी, मेन वही है कि मतलब श्रृंगार करें लेकिन कोई नुकसान ना हो, वो ज्यादा सही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। और बाकी तो सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है ना,
0: जी।
1: सिंपल रहना, मतलब और उच्च विचार, है ना।
0: जी
1: ठीक है, अच्छा एक
0: बताइएगा।
1: दूसरा आज हम थोड़ा सा एक चर्चा एक नट की और कर ले, मत कि सुमन कल्याणपुर साहिबा गुजर गई हैं कल, है
0: जी।
1: ना। तो क्योंकि फिल्म संगीत से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: पूरे श्रोताओं
1: भगवान
0: और हमारे आकाशवाणी परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरा भारत ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ना।
1: जी, बिल्कुल
0: तो
1: ईश्वर उनकी
0: एक
1: आत्मा को शांति दे, उनके
0: बिल्कुल
1: तमाम प्रशंसकों को

0: झेलने की हिम्मत दे।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: उनकी आवाज लगातार गूंजती रहेगी, तो
1: बिल्कुल
0: उनकी आवाज सुनते सुनते अपन लोग बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए इस अहमद जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू मैम, थैंक
1: जी जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: जी, आज हमने
1: मैं ग्राम वापुष्ट गौना कुसमार थाना सुजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: दीपक जी। जी
1: जी
0: दीपक जी, आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में। जी, तो आप क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आप सही, तो श्रृंगार आप ही कराते हैं लोगों का।
1: जी, अगर लोग जैसे कपड़े बनवाते हैं जिस प्रकार के, तो सभी प्रकार के डिजाइनों कई डिजाइनों द्वारा कपड़ा बना देते हैं और वही व्यक्ति को पहना देते हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे
0: जी
1: शादी ब्याह में, अगर शादी ब्याह की घटना हो, तो फिर अगर दूल्हे का कोट पैंट हम लोग ही नहीं बनाएंगे तो कहाँ से वो श्रृंगार होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा।
0: हाँ, वही तो कह रहे कि पूरा बेसिक चीज तो आप ही उसमें तैयार करते हैं उनको। तो बताइए, क्या महत्व है अच्छे कपड़े, मतलब फिटिंग के, और अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे प्रेस किए हुए, और थोड़ा बहुत श्रृंगार करने का क्या महत्व है?
1: जी, सबसे पहले अच्छा कपड़ा हम लोगों का राजा रंग कहलाता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा।
0: जी
1: अगर वो कपड़ा व्यक्ति को बन जाए और उसका फिटिंग का बन जाए तो काफी अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है।
0: जी
1: कपड़ा जैसा चाहे तो इतना ही खराब कपड़ा हो, लेकिन उसकी फिटिंग बनावट सही आ जाए तो कपड़ा ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आदमी को भी अच्छा लगने लगता है।
0: बिल्कुल
1: और हमारे घर में लेडीज काम भी होता है, तो दुल्हनों का हमारी बहन जी तैयार करती हैं जैसे,
0: जी
1: और कपड़े भी बनाती हैं लहंगा चुनरी, तो बहुत अच्छा साज सज्जा कर लेती हैं जी।
0: जी तो मतलब एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है ना साज श्रृंगार और अच्छे कपड़े पहनने के बाद।
1: वही तो मेकअप मेकअप मेकअप हो, अगर कितना ही कलर मद्दा हो मेकअप कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को आप पहचान नहीं सकते हैं,
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रूबरू हो जाता है, बिल्कुल अलग
0: जी
1: से रूप बदल जाता है उसका।
0: जी बिल्कुल, यानी कि हम बहुत सुंदर कर देते हैं लोगों को, है ना, साज श्रृंगार
1: जी
0: से। तो आप किसके, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के सिलते हैं?
1: जी हम तो दोनों सिल लेते हैं, लेकिन बहन हरे हैं तो वो लेडीज सिलती हैं, हम जेंट्स सिलते हैं, लेकिन बना तो हम लोग दोनों लेते हैं, जेंट्स भी बना लेते हैं और लेडीज भी बना लेते हैं,
0: अच्छा, जी,
1: क्योंकि हमारा पैतृक धंधा सिलाई ही है दीदी।
0: जी तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही लोगों को सुंदर बनाते रहिए। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्कार दीदी।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: हेलो
1: हेलो, मध्य प्रदेश भोपाल।
0: जी, मध्य प्रदेश भोपाल से बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय लिखा है साज और श्रृंगार के बारे में, है ना।
1: जी
0: कैसे सजना धजना जो 16 श्रृंगार हमारे माने गए हैं ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले।
1: मैं कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संबलपुर नगरी से।
0: जी, आपका
1: आप
0: नाम।
1: कौन बोल रही? आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: चलो जी, आपने नाम बोले थे मेरे लिए,
0: जी,
1: आपको समय नहीं तो बता नहीं पाऊंगा इस समय। मैं बाप बताऊँ
0: जी,
1: हाँ, क्या
0: तो कुछ बोलेंगे आप?
1: बोले बोला आप बताओ।
0: अरे यही कह रहे हैं कि जब हम सज धज जाते हैं, लोगों को सजा धजा देखते हैं, अच्छे से तैयार हुए देखते हैं, तो हमें कैसा
1: हाँ
0: लगता
1: अच्छा
0: है?
1: लगता है ना, कहीं कहीं जा रहे हैं सर जाएंगे तो।
0: जी,
1: हाँ कहीं
0: तो
1: जा रहे हैं शादियों में, कहीं सरपंचियों में, अच्छा लगता है।
0: जी,
1: हाँ
0: तो वैसे भी घर में बहुत अच्छे साफ सुथरे और धुले धुलाए कपड़े और रोज धो के कपड़े पहनना
1: नहीं तो
0: चाहिए।
1: साफ सफाई इधर तो अच्छे लगेंगे, कोई कपड़े अच्छे प्यारों तो साफ अच्छे लगते हैं। अरे आदमी कुछ
0: जी
1: भी
0: जी
1: सफाई
0: तो आपका
1: रखो घर में, और कहीं जाऊँ तो बस। हाँ
0: आपका नाम मैं फिर से सुन सकती हूँ?
1: कालीचरण यादव, संदलपुर से, संदलपुर
0: सुंदलपुर।
1: आत्री के पास गाँव है मेरा, संदलपुर
0: जी जी जी जी
1: ग्वालियर के
0: जी
1: पास में है
0: जी जी जी
1: जी।
0: तो चलिए, आपने फोन किया उसके लिए बहुत

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी, आज आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार, यानी सजना धजना। इसके बारे में आपसे बात करेंगे, तो अपना पहले परिचय दीजिएगा और फिर जगह का नाम बताइए और इसके बारे में कुछ बताइएगा आप।
1: मैं ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ।
0: राम नरेश जी,
1: जी
0: जगह का नाम क्या बताया आपने?
1: ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश।
0: राजगढ़ से। जी, बताइए राम नरेश जी।
1: जी
0: साज श्रृंगार जब हम सजते धजते हैं या घर की महिलाएं जब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं तो क्या फीलिंग होती है, और क्यों हमें जो 16 श्रृंगार हमारे बताए गए हैं वो क्यों जरूरी हैं?
1: अब ये तो देखिए, घर की जो महिलाएं रहती है 16 श्रृंगार के विषय में वो
0: जी
1: बेहतर बता पाएंगी और उनमें किस तरह की भावना आती है, किस तरह की फीलिंग आती है
0: तो
1: 16
0: आपके
1: श्रृंगार
0: आपके घर
1: करने
0: में
1: के लिए।
0: हैं कोई महिलाएं? बात कराइए हमें।
1: अभी तो नहीं, और मेरे ख्याल से जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको अपने विचार नहीं बता पाएंगी।
0: तो आप ही बता दीजिएगा, आप क्या फील करते हैं कि मतलब ये जो अपने जेवर हैं या गहने हैं ये पहनना चाहिए कि नहीं?
1: हाँ, बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। जो जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, जो आभूषण जो पहनती हैं हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं, तो
0: जी
1: वो तो खैर उनको अच्छा ही लगता है। और हर स्त्री चाहती है कि मैं किसी समारोह में जाऊं, विवाह समारोह हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, तो सबसे अलग दिखूं,
0: जी
1: या यूं कहे कि एक आकर्षण हो
0: जी
1: और दूसरी उनकी जो साथी मित्र हैं वो पूछें कि बड़ी अच्छी लग रही हो, या फिर ये गहना
0: हाँ
1: कैसे लिया,
0: जी जी
1: इस तरह की बातें वो करें, तो
0: जी
1: वो बेहतर से बेहतर तैयारी करती हैं कि पूरी कोशिश करती हैं कि हाँ कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी सजूं,
0: जी
1: सवरूं,
0: जी जी
1: लोगों को अच्छा लगे और तारीफ करें,
0: जी
1: ऐसा भी भावना आती है, फीलिंग आती है
0: जी
1: महिलाओं
0: और
1: के लिए।
0: राम नरेश जी, और जब उनको उपहार में पति या भाई या पिता कुछ आभूषण देते हैं तो बहुत खुश होती हैं ना?
1: हाँ, जो घर की महिलाएं होती हैं, जैसे पति हुआ या कोई भाई हुआ, जैसे मान लो रक्षाबंधन पे भाई ने कुछ पायल का उपहार दिया,
0: जी
1: तो वो इस चीज को संभाल के रखती है कि ये मेरे पीहर का है, मायके का है,
0: जी जी
1: और इस चीज को बड़ा वो संभाल के रखती हैं और पहनती हैं। और कई बार जैसे कोई अच्छा उपहार मिला और उसे पहन लिया तो दूसरी महिलाएं पूछती है बड़ी अच्छी है,
0: जी
1: कितने
0: जी
1: में ली, तो वो
0: जी
1: कहती है कि हमने ली नहीं, हमारे भैया ने उपहार में दी
0: जी
1: है, या फिर हाँ, या
0: जी
1: फिर वो कहते हैं हमारे पति ने हमें उपहार में दी है, या हमारी माँ ने हमें उपहार में दी है, तो इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ तक सजने संवरने की बात है, तो हर स्त्री को सजना संवरना चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: मनुष्य जीवन मिलता है,
0: जी
1: और सजना संवरना और अच्छी तरह से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, वो
0: बिल्कुल
1: कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा का उसमें भाव होता है। और माता अन्नपूर्णा तो एक हमारी जो भारतीय नारी होती है, वो जिस तरह से वो सजती संवरती है, ऐसा लगता है कि देवी का स्वरूप हो,
0: बिल्कुल। तो हमारी जो देवियां हैं वो भी पूरे श्रृंगार में रहती हैं ना?
1: पूरे श्रृंगार में रहती हैं, और
0: जी
1: जब उनको देखते हैं

0: देवी जैसी भावना आती है,
1: बिल्कुल
0: अच्छा लगता है कि हमारे मन में एक सम्मान जागता है कि हमें जो हमारे भारतीय नारी हमारी माता है बहन इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो वो शक्ति सवरती है, सजना सवरने से व्यक्ति हुआ या महिला हुई या कोई भी हुई, वो थोड़ा देखता है कि जैसे महिला कहती है अरे आपने कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है
1: जी,
0: आज
1: जी,
0: तो आपने चोटी बड़े अच्छे ढंग से की है, उस पार्टी में आपने उस तरह से की थी, इस पार्टी में इस तरह से की है, बड़े अच्छी की है, इस तरह से
1: चलिए तो बहुत सारी बातें आपसे हो गई राम नरेश जी, और आपने बहुत अच्छे से बताया है, तो फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये था कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। आपने बहुत सारी बातें की और आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने।

0: इसी के साथ आज्ञा दीजिए साधना जैन को।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, फोन इन कार्यक्रम था ये, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियोग में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू कर दिया है, जो 6 जून तक खुला रहेगा। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्रामीण उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इस योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती के अवसर पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजनों से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत रहना है तेरे दिल में इस फिल्म से है। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें, समीर का गीत और हरीश जयराज का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधरे, आरती जोंधरे, औरंगाबाद से राजेश सावली पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

अगला गीत की फरमाइश भेजिए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने इन्हें सुनना चाहा है। कोयला फिल्म से ये नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबने सुनना चाहा है मन फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और हेमा सिरदेसाई की आवाज़ें हैं, समीर का गीत है और संजीव दर्शन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। ग्राम अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने इन सब ने सुनना चाहा है बॉम्बे फिल्म का ये नगमा चित्रा की आवाज़ में, महबूब का गीत और ए आर रहमान का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा गुलाम फिल्म से आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, करियादंड हट्टा बालाघाट से हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यही कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे भी आप सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में समय 12:30 बजे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाक नामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाक नामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाक नामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आगे

0: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
1: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
0: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
1: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
0: शहर जा रहा हूँ, 1 महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
1: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूं?
0: नूरी, नूरी मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
1: बांधती हूँ।
0: और सुन, पहले 1 कप चाय पिला।
1: ये लो चाय।
0: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है, है? ये चाय बनाई है तूने? ये ले।
1: अब चाय में क्या खराबी थी?
0: चाय में क्या खराबी थी? हाँ, जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी। ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे?
1: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
0: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहां क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
1: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
0: जुबान लड़ाती है।
1: हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा नामर्द।
0: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
1: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
0: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अकल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
1: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
0: नूरी, नूरी अपनी जुबान बंद कर, मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है, हैं?
1: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
0: नूरी, नूरी तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान। अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
1: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूँ तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
0: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, है?
1: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी। और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
0: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
1: अब ऐसा नहीं होगा। जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
0: नूरी, मर्द के बिना औरत के बिसात ही क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
1: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
0: चल चल, अपनी बेतु की बातें छोड़ और घर का काम कर, चल। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
1: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
0: क्या, तलाक?
1: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
0: पागल हो गई है क्या?
1: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा।
0: नूरी, रुको रुको नूरी,

0: अरे फाता फाता जरा सुनना।
1: आप कहो।
0: फाता, तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ कहा तो था। कोई नजर में है?

0: मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
0: अरे वो ही, अरे अपने रसूल मियाँ, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
0: वादा, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियाँ से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
0: कमाता तो है और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा पाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, अब वो रसूल मियाँ से मिल जरूर लेना पाता। खुदा हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: मामिया, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ, कहो क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए बेटा। मैं भी तो अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
0: अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
1: हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है। जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
0: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
1: हाँ, वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
0: हाँ हाँ, पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
1: हाँ, पर नसीब ही खराब था बेचारी का। निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
0: क्यों?
1: अरे, अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो। सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी। अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
0: अब चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा,
0: जी।
1: सारे के बारे में सोचना, मैं फिर आऊंगी कभी। अभी चलती हूँ बेटा।
0: जी, सोचूंगा। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: अरे मियाँ रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे?
0: अब बस यूं ही आई थी।
2: फाता यूं नहीं आ सकती मियाँ, उधर जरूर कोई काम रहा होगा।
0: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
2: सारे की बात?
0: हाँ।
2: अभी अभी तो उसका मुश्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
0: तुम जानते हो उसे?
2: बहुत अच्छे से।
0: कैसी है?
2: देखोगे तो देखते रह जाऊंगे मियाँ।
0: अच्छा,
2: जन्नत की परी लगती है।
0: हाँ?
2: एक बार उसको देख ले, उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियाँ।
0: अच्छा, तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूँ?

0: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियाँ।
1: अच्छा,
0: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी, वो खुश होगी तो बात आसानी से पड़ सकती है।
1: फिर तो समझो मियाँ कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
0: फिर तो मियाँ बात बन गई।

0: अरे अरे भाई फजी,
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई, ले ये सामान रख लो। लो तो, हाँ भाई, वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा दे दी है, उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा।
1: अजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: अरे भाई, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है। देखो फजी, सारे का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तिहान है ये। मुश्ताक कमजोर न पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई, घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं घर में ही हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठो। हाँ भाई, कहो कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई, मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी, चाय तो पिलाओ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाई जान, अल्लाह के रहमो करम से सब ठीक है। आप बताएं। सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है, बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूं अकरम। औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
2: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
2: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
2: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
2: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: साराय का दूसरा निकाह?
2: हाँ।
0: किसके साथ?
2: अब रसूल मियाँ को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से साराय का निकाह?
2: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल

0: एक नंबर का लफंगा आदमी है।
1: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब माता को पैसे भी देता है और इसी लालच में आकर फाता सारे का निकाह रसूल से कर रही है।
2: चाहे किसका निकाह हो रहा है?
0: अरे सारे का निकाह हो रहा है।
2: क्या सारे का निकाह किसके साथ?
0: रसूल के साथ।
2: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
0: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका,
1: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
2: नूरी ने तलाक ले लिया?
1: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
2: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
1: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल, नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया, आखिर उसे सुखी क्या था। रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता और वहां शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था और नूरी यहाँ इंतजार करती थी, और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को पूरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया, जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी, अब बताते हुए भी जुबान कांपती है। अल्लाह माफ करे।
0: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी? उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
2: अजी पर अब फाता तो उसी जालिम रसूल से सारे का निकाह कर रही है ना।
0: लालच में आकर वो सारे की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
1: लेकिन सारे की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
0: वो कैसे?
1: भाई जान ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे, और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने सारे से छुपाकर मुश्ताक से तलाक ले लिया और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसे दे।
0: अपनी खुशी के लिए फाता सारे की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी है।
2: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी ये हमने सोचा भी नहीं था। वो सारे के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक सारे को कभी तलाक नहीं देता।
1: हाँ ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाई जान।
0: अरे भाई हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
1: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और सारे तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
2: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाई जान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
0: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो, और देखना एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
2: अजी यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है

0: तो मजे से जुल्म करता है और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है। यही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
1: अच्छा भाईजान, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
2: अच्छा, और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
1: खुदा हाँ।
0: सुनो, हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
2: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो, वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
0: हाँ, पर हकीम जी के पास जरूर जाना और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ। मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
2: पता करता हूँ, तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
0: हाँ, अभी लाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर,
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
5: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से 6 जून तक के लिए पोर्टल शुरू किया है। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन

मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में स्थायी घरेलू कनेक्शन योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिक जानकारी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को हराकर पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी कर ली है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओले की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

से क्यों प्यार, विश्वास और खुशी को एक साथ समेटे हुए महिला सभा के इस अंक में आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आराधना का बड़े ही प्यार व स्नेह के साथ नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ सखियों, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सखियों, कहते हैं यदि हमारे अंदर हौसला है तो हम विकट से विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परेशानियों से या कठिनाइयों से लड़ने का हौसला जो है वो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सखियों, यदि हम हौसला रखेंगे और उसे डगमगाने नहीं देंगे ना, तो ना सिर्फ हम उस कार्य में सफल होंगे बल्कि हम मंजिल तक के सफर को आसानी से मेहनत और ईमानदारी के बल पर हासिल कर लेंगे, पालेंगे, जीत लेंगे। इसलिए सखियों, बढ़िए मंजिल की तरफ और रखिए अपने मन में विश्वास इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सदियों खूबसूरत गीतों के साथ सूचना, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा और मनोरंजन यानी ये सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो कि 1936 से अपनी स्थापना के साथ ही 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है। पता है सखियों, आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है जो देश के 99% से अधिक आबादी तक 23 भाषाओं और 179 बोलियों में अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। साथ ही सखियों, 90 वर्षों से अनवरत अपनी सेवाएं देने वाला आकाशवाणी कभी ट्रांजिस्टर तक ही सीमित था, लेकिन आज ये एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, जिसमें सभी प्रोग्राम आप घर बैठे या विदेश में कहीं भी सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं कार्यक्रमों से। तो सखियों, 90 वर्षों के इस योगदान में सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी के साथ की, यानी आप सभी श्रोताओं की। तो फिर सुनते रहिए भारत की आवाज आकाशवाणी। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई प्रतिभा किरण योजना के विषय में। सखियों, इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व आर्थिक सहायता प्रदान करना। सखियों, इस योजना में पात्रता की यदि बात करें तो पात्र छात्रा को शहर की निवासी होना चाहिए, उसे बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए, साथ ही कक्षा 12वीं में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। सखियों, इस योजना से मिलने वाली सहायता में सामान्य स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 5000 और मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 7500 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सखियों, इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकते हैं और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब वक्त है क्रम मेरी उड़ान का, पहचान का, कुछ कर दिखाने का। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, वर्तमान परिवेश पर यदि नजर डालें तो नारी का संघर्ष, उसकी सफलता की कहानी, कहीं उसकी आगे बढ़ने की चाहत पर तो कहीं कुछ महिलाओं की घर परिवार की जरूरतों को मद्देनजर रखकर बनी होती है। यानी आज की नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऊंची सोच और लक्ष्य से हर उस मंजिल को छू रही है जो सिर्फ हमारे लिए कभी सपना हुआ करता था। हाँ, इस राह में कई मुश्किलें और मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन आज की नारी अपने हौसले से हर बाधा को पार कर आगे बढ़ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक सफल, सशक्त और कुछ हटकर व्यवसाय को अपनाने वाली सखी अर्पणा जैन से। अर्पणा जी जो एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो अर्पणा जी, स्वागत है आपका हमारे इस क्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो अर्पणा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे और कहां से आपने इस कार्य की शुरुआत की, यानी आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ?
1: एक्चुअली में मेरे इस सफर की शुरुआत शादी के बाद और बेटे के जन्म के बाद हुई। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी जिसमें मेरी एजुकेशन का सदुपयोग हो और साथ ही समाज के लिए मैं कुछ उपयोगी कर सकूँ, ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है अर्पणा जी। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की और कौन सी डिग्री लेना इसके लिए जरूरी होता है?
1: वैसे तो मैंने फिजिक्स में MSc किया है, BEd हूँ और डी फार्मा भी है। देखा जाए तो मेरे पास टीचिंग का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैरियर का ऑप्शन था, पर चूंकि मुझे कुछ अलग सा करना था जिसमें मेडिकल स्टोर खोलने का ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना जरूरी होता है और साथ ही फार्मेसी स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन और ड्रग सेलिंग का लाइसेंस भी होना चाहिए।
0: तो अर्पणा जी, जब आपने मेडिकल स्टोर खोलने का जो निर्णय लिया, सभी के बीच में आपने जब अपनी बात रखी, तब आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला? और सपोर्ट यदि मिल गया तो इस दौरान कौन कौन सी आपके बीच में परेशानियां आई?
1: क्योंकि हमारे देश में मेडिकल स्टोर जनरली देखा है कि पुरुष ही चलाते हैं।
0: हाँ, ये पुरुषों का व्यवसाय है।
1: हाँ जी हाँ, तो पुरुष ही चलाते हैं, तो एक महिला होने के नाते मेडिकल स्टोर खोलना और चलाना एक्चुअल में टफ वर्क है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारी महिलाएं करती हैं और लड़कियां करती हैं, लेकिन वो खोलने से थोड़ा हिचकती हैं
1: तो कि आपको

0: हर तरह के व्यक्ति को उसमें डील करना पड़ता है। तो इन सब में मेरे परिवार स्पेशली पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो ये काम संभव ही नहीं था, क्योंकि एक तो ये बहुत ही जिम्मेदारी और अलर्टनेस का जो है, आज का समय ऐसा है, रोज रिसर्च हो रहे हैं, तो रोज नित नई तरह की बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, तो नित नई दवाइयां आ रही हैं उनके लिए, और उन सबको अवेलेबल कराना, किस जगह किस एरिया में उपलब्ध है, कहाँ नहीं है, उन सबको उपलब्ध कराना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, साथ ही जीएसटी के बाद सारा ये बिलिंग का काम, जीएसटी, तो ये सब बिजनेस के उतार चढ़ाव, इस सब में मेरे पति ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया।
1: अपना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा अर्पणा जी, ये बताइए कि क्या कभी किसी व्यक्ति या महिला के पास में कोई आपके पास में आई दुकान पर दवाई खरीदने, तो उस टाइम दवाई खरीदने के उसके पास में पैसे नहीं है मान लीजिए, तो उसको जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं?
0: जनरली तो देखा गया है कि दवा खरीदने वाला आया हुआ व्यक्ति जो आता है वो अब पैसे लिए हुए हो, पर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें या तो दवा में ही अमाउंट कम कर देते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं, और यदि बिल्कुल भी ना हो तो जरूरत की दवा उन्हें फ्री में ही दे देते हैं।
1: यानी कमजोर व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो आप उनको फ्री में भी कई बार दवा दे देते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है ये तो अर्पणा जी। अच्छा ये बताइए कि क्या इस व्यवसाय में, आप जो व्यवसाय कर रही है, इसमें उधार भी लिया दिया जाता है, बाद में आप उन पर चुकाने आते हैं लोग?
0: जी जी, जैसे ये बिजनेस है, मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, इस बिजनेस की एक खासियत है, यहाँ बिजनेस में अन्य तरह के जो बिजनेस होते हैं उनमें आप माल खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं, फिर आपका पैसा वापस आता है, लेकिन ये इन सभी बिजनेस के अपोजिट होता है, इसमें माल उधार पर आता है और कुछ समय के लिमिट के बाद उसको चुकाना होता है, और लेकिन दवा बिकती नकद में है, तो इसमें चूंकि मेडिसिन के रेट काफी बढ़ते रह रहे हैं, आप अभी समय देख रहे हैं जिसमें काफी रेट में इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पूरा अमाउंट लिए नहीं होता है तो हमें उधार भी देना होता है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है,
1: ये बड़ी सबसे बात है। बड़ी बात है,
0: तो एक आध मामले को आप यदि छोड़ दें तो उधार लेने वाले व्यक्ति लेकिन समय के साथ कोशिश करते हैं कि वो अपना उधार चुका देते हैं।
1: बिल्कुल अर्पणा जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है ना। अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: मेरा तो अपनी सभी सहेलियों से, सखियों से यही कहना है कि आज के इस महंगाई के युग में जहाँ कोई काम हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और किसी महिला का कैरियर, यानी कहना चाहिए कि सफल कैरियर, यदि वो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है तो साथ ही उनके पीछे आने वाली जो महिलाएं हैं वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती हैं।
1: बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखती हैं। आगे बढ़ने के लिए।
0: तो वो जो है काम करने वाली महिला है वो तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनती है, उसका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, लेकिन उनके पीछे पूरी एक महिलाओं की लाइन आ रही होती है, सफल वर्किंग वुमेन रोल मॉडल होती है और उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। तो महिलाओं को कहना चाहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक आर्थिक रूप से कामयाब महिला कई और महिलाओं की प्रेरणा बन जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने में प्रेरणा भी देती है। तो हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे करियर हल्का भी थोड़ा हो, लेकिन हमें उसको सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और निष्ठा से काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी छोटे छोटे स्टेप लेकर आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और आप उस काम में सफल होंगे। और आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखियों, ये तो था क्रम मेरी उड़ान, और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

और सखियों इस प्यारे से गीत के बाद अब चलते हैं खूबसूरती की ओर। सखियों, खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मेकअप के छोटे छोटे राज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारा मेकअप ही आपको खूबसूरत बनाएगा या फिर दिखाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए सखियों, आज आपको बताते हैं कि सौंदर्य के छोटे छोटे उपायों से भी आप अपने व्यक्तित्व को बना सकती हैं आकर्षक और खूबसूरत। जैसे कि सखियों, रोज रोज लिपस्टिक से बचने के लिए आप गहरे रंग की लिपस्टिक के बजाय होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक का प्रयोग करें। इससे होंठों पर हल्की चमक व तरावट बनी रहती है और साथ ही हल्का गुलाबी रंग होंठों के कुदरती रंग को भी बरकरार रखता है। होंठों के बाद अब बात यदि आंखों की करें सखियों, तो यदि आप आंखों के मेकअप से कतराती हैं और नहीं करना चाहती हैं और बेवजह आई शेडो, आई लाइनर या फिर काजल का प्रयोग भी नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसे में आंखों को सिर्फ मस्कारे की थोड़ी मोटी परत पलकों पर लगाएं। ये पलकों को इतना आकर्षक बना देती है कि इसके साथ आपको अन्य कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्यों, नमी रहित त्वचा से चेहरा बेजान और अस्वस्थ यानी बेरंग बेनूर नजर आता है, इसलिए बेरंग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए मॉइस्चराइजर में हल्का शिमर मिलाएं। इससे आपकी त्वचा जो है वो दमकती नजर आएगी। तो सखियों, ये तो थे मेकअप के छोटे छोटे से राज, जिनको आजमा कर देखें आप भी मेकअप करते समय। और अब कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं इस गीत के साथ।

गीत के बाद अब सखियो चलते हैं अपनी रसोई में। सखियो, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम फलों के राजा आम का चल रहा है, आम जो कि बाजार में कई सारी वैरायटियों में इस समय उपलब्ध है, तो चलिए आज रसीले आमों से ही बनाते हैं अपनी रसोई में एक बहुत ही आसान और यम्मी टेस्ट वाला ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। सखियो, दो लोगों के लिए मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए आपको चाहिए सामग्री: ताजा दही 500 ग्राम, आम 2 नग, पिसी हुई चीनी स्वादानुसार, साथ ही चाहिए आपको इलायची पाउडर, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, केसर और थोड़ा सा गुलाब जल। और अब इसे बनाते कैसे हैं, तो नोट कीजिए सखियों इसे बनाने की विधि। सखियों, सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए टांग दें, ताकि उसका जो पानी है वो सारा पानी निकल जाए। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। इसके बाद अब एक बड़े बाउल में विस्कर की मदद से दही को अच्छी तरह से फेंट लें, जब तक कि वह एकदम क्रीमी ना हो जाए। फिर उसमें पिसी हुई चीनी और आम का पल्प डालकर 5 मिनट तक और फेंटें। अब इसमें कटे हुए आम, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता की कतरन और साथ ही भीगी हुई केसर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। और अब तैयार श्रीखंड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। तो लीजिए, तैयार है सर्व करने के लिए स्वादिष्ट ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। और अब सखियों आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत के साथ ठंडे ठंडे मैंगो श्रीखंड का।

और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं अज्ञात विज्ञापनों से रहें सावधान। यानी सखियों, उन लुभावने, झूठे या बिना पहचान वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें जो हम उपभोक्ताओं को ठगने या गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सखियों, धोखाधड़ी से बचने के लिए विज्ञापनों की सत्यता को परखना बेहद जरूरी है। यानी कुछ सावधानियां बरतना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि अतिशयोक्ति से बचें, यानी अगर कोई विज्ञापन बहुत ही शानदार लग रहा है तो उस पर आसानी से विश्वास बिल्कुल भी न करें, बल्कि किसी भी सामान को सखियों खरीदने से पहले कंपनी के आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही सखियों, उस विज्ञापन से संबंधित निष्पक्ष रिव्यूज और रेटिंग्स की भी जाँच करें। वहीं लुभावने विज्ञापनों के पॉपअप पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी भी दर्ज न करें। लेकिन हाँ सखियों, भारत सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर विज्ञापनों से संबंधित नियमों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में जागरूक अवश्य रहें। तो सखियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी अज्ञात विज्ञापनों से सावधान रहने की। और अब सखियों, हमारे मिलने का समय बस यहीं तक। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। और अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति आराधना जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे नारायण सिंह सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।
3: ओ सैया मारी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे परीक्षित पर निर्कर के गाए गीत।

परीक्षित पर्निरकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में दादा फिल्म से, महेंद्र दहलवी का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर का ही गाया हुआ फरीब फिल्म का ये गीत। असद भोपाली के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी, बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा।

0: अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

0: इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों

0: के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा हमने लिया है क्रांति फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। संतोष आनंद का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है ग्राम महेश्वाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न खाड़े, वाल्मीकि खाड़े, नीनाजी खाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

महबूब की मेहंदी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की बोल है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। आप सबने पसंद किया है चमत्कार फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका।

नूरी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को जान निसार अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने।

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश संगीत फिल्म के इस गीत की अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने जिसे आवाज़ दी है, संतोष आनंद का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, किशोरी बोस, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व

0: योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:15 और रात 10:00। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 6:30 सुनिएगा चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। रात 8:00 समाचार सेवा आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। उर्दू प्रोग्राम कहकशां में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम आवशारे गजल रात 9:30 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रामदास मुंगरे का ख्याल गायन राग होगा गौण मल्हार। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत।
2: ओ सैया मारी।

लोक संगीत में आपने सुना नारायण सिंह सिसोदिया और साथियों के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुगम संगीत में सुनिए परीक्षित पनेरकर के गाए कुछ गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सच्चा झूठा से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, इंदिवर का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम

कटी पतंग। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखे गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव वर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अब सुनिए सागर फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत जूडी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, नीरज का गीत और एसडी वर्मन का संगीत। एसडी वर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही इंदौर में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहाँ इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में विस्तृत जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए देश भर में विशेष शिविरों का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। और भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आत्मकथा लेखन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए

0: आपके सामने हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार श्री रमाकांत श्रीवास्तव और उतने ही वरिष्ठ कथाकार श्री शशांक। शशांक जी और रमाकांत जी, हिंदी में आत्मकथाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी एक आत्मकथा याद आती है, बल्कि आज तक जो प्रसिद्ध है, और वो मूलतः हिंदी में नहीं लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने सत्य के प्रयोग शीर्षक उपशीर्षक दिया था। सत्य के प्रयोग शीर्षक देने के पीछे गांधी जी की जो भी मंशा रही हो, वो उनकी आत्मकथा को पढ़कर और स्पष्ट होते जाता है। लेकिन क्या आत्मकथा में झूठ भी लिखा जाता है? एक प्रश्न तो ये है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हिंदी में कहानियाँ, उपन्यास और किसी भी भाषा में लिखे ही जाते हैं गद्य में, फिर आत्मकथाओं की ज़रूरत क्यों होती है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि इधर जो आत्मकथाओं का एक नया दौर शुरू हुआ है, तो इससे क्या साहित्य की श्रीवृद्धि होती है और किस तरह से ये आत्मकथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती जाती हैं? मैं रमाकांत जी से जानना चाहूँगा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं।
1: राजन, जहाँ तक सवाल है कि आत्मकथा में क्या झूठ लिखा जाता है, लिखा जाता तो मैं नहीं कहूँगा, लिखा जा सकता है, अगर कोई झूठ लिखना चाहे तो कौन रोक लेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे सामने विश्व की अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में और फिर हिंदी में भी जो भी आत्मकथाएं आई हैं, उनमें कई आत्मकथाएं ऐसी हैं जो हमें उस समय की, मतलब पूरे परिदृश्य को सामने रखने की कोशिश लेखक के द्वारा की गई है, ऐसी आत्मकथाएं हैं। अगर हम हिंदी में आत्मकथाओं के दौर की बात करें तो पहले तो सबसे पहले जो नाम याद आता है लोगों को कि बच्चन ने जब आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। और अमूमन लोग उसके पहले झांक कर नहीं देखते, लेकिन बच्चन जी की उस आत्मकथा के पहले भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गई हैं। हम राहुल जी को ना भूलें, मेरी जीवन यात्रा, और बहुत महत्वपूर्ण उसमें सूचनाएं हैं, पूरा काल उस वक्त का उभर कर सामने आता है। उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर जी, ये एक हिंदी में एक विशिष्ट आत्मकथा इसे मानता हूँ। श्याम सुंदर दास ने भी लिखी, लेकिन मुझे याद नहीं है उसका नाम। तो बच्चन जी के पहले भी आत्मकथाएं लिखी गईं, और फिर रांगे राघव हैं, अभी अभी मिथिलेश्वर की आत्मकथा आई हुई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आत्मकथाओं में नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो आत्मकथा है, मैं समझता हूँ कि सच बोलने का एक दावा लेखक उसमें निश्चित रूप से कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि शशांक जी सहमत होंगे इस बात से।
0: शशांक जी, मैं एक बात में जोड़ना चाहूँगा कि अभी बच्चन जी की आत्मकथा का जिक्र रमाकांत जी ने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और दश द्वार से आत्मकथा लेखन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार श्री रमाकांत श्रीवास्तव और उतने ही वरिष्ठ कथाकार श्री शशांक। शशांक जी और रमाकांत जी, हिंदी में आत्मकथाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी एक आत्मकथा याद आती है, बल्कि आज तक जो प्रसिद्ध है, और वो मूलतः हिंदी में नहीं लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसको उन्होंने सत्य के प्रयोग शीर्षक उपशीर्षक दिया था। सत्य के प्रयोग शीर्षक देने के पीछे गांधी जी की जो भी मंशा रही हो, वो उनकी आत्मकथा को पढ़कर और स्पष्ट होते जाता है। लेकिन क्या आत्मकथा में झूठ भी लिखा जाता है?

0: एक प्रश्न तो ये है जिस पर हम लोग विचार करेंगे, और दूसरी बात यह है कि जब हिंदी में कहानियाँ, उपन्यास और किसी भी भाषा में लिखे ही जाते हैं गद्य में, फिर आत्मकथाओं की ज़रूरत क्यों होती है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि इधर जो आत्मकथाओं का एक नया दौर शुरू हुआ है, तो इससे क्या साहित्य की श्रीवृद्धि होती है और किस तरह से ये आत्मकथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती जाती हैं? मैं रमाकांत जी से जानना चाहूँगा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं।
1: राजन, जहाँ तक सवाल है कि आत्मकथा में क्या झूठ लिखा जाता है, लिखा जाता तो मैं नहीं कहूँगा, लिखा जा सकता है। अगर कोई झूठ लिखना चाहे तो कौन रोक लेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे सामने विश्व की अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में और फिर हिंदी में भी जो भी आत्मकथाएँ आई हैं, उनमें कई आत्मकथाएँ ऐसी हैं जो हमें उस समय की, मतलब पूरे परिदृश्य को सामने रखने की कोशिश लेखक के द्वारा की गई है। ऐसी आत्मकथाएं हैं। अगर हम हिंदी में आत्मकथाओं के दौर की बात करें तो पहले तो सबसे पहले जो नाम याद आता है लोगों को कि बच्चन ने जब
0: जी
1: आत्मकथा लिखी,
0: जी
1: क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। और अमूमन लोग उसके पहले झांक कर नहीं देखते, लेकिन बच्चन जी की उस आत्मकथा के पहले भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गई हैं। हम राहुल जी को ना भूलें, मेरी
0: हाँ
1: जीवन यात्रा, और बहुत महत्वपूर्ण उसमें सूचनाएं हैं। पूरा काल उस वक्त का उभर कर सामने आता है। उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर, ये एक हिंदी में एक विशिष्ट आत्मकथा इसे मानता हूँ। श्याम सुंदर दास ने भी लिखी, लेकिन मुझे याद नहीं है उसका नाम। तो बच्चन जी के पहले भी आत्मकथाएं लिखी गईं, और फिर रांगे राघव हैं। अभी अभी मिथिलेश्वर की आत्मकथा आई हुई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आत्मकथाओं में नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो आत्मकथा है, मैं समझता हूँ कि सच बोलने का एक दावा लेखक उसमें निश्चित रूप से कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि शशांक जी सहमत होंगे इस बात से।
0: शशांक जी, मैं एक बात में जोड़ना चाहूँगा कि अभी बच्चन जी की आत्मकथा का जिक्र रमाकांत जी ने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और दश द्वार से सोपान तक, एक क्रम है। लेकिन बच्चन जी के जीवित रहते ही, और बच्चन जी ने चूंकि अपने ही जीवन के बारे में लिखा और उनका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन भी है और उसके बारे में उन्होंने लिखा, तो बच्चन जी की आत्मकथा बच्चन जी के रहते ही विवादास्पद भी हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि ये घटनाएं इस तरह की नहीं हैं जैसी बच्चन जी ने लिखी हैं। तो मैं इस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आत्मकथा इतिहास नहीं होती, वो थोड़ा आत्मविवरण भी होती है और आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार की भी एक चीज़ होती है। तो जो अनुभव और जो साक्षात्कार उन परिस्थितियों में, उन घटनाओं से बच्चन जी को हुए, हो सकता है कि वो सामने किसी अन्य को पता ना हो। इसी से सवाल उठता है कि क्या उन्हीं घटनाओं को आत्मकथा में हम औपन्यासिकता की दृष्टि से भी परख सकते हैं?
2: देखिए राजन जी, आपने गांधी जी के सत्य के प्रयोग की बात कही थी। गांधी जी ने शुरुआत में ही सत्य के प्रयोग में ये कहा कि मेरे समान अनेकों का जय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। आत्मा को नापने के लिए सत्य का गज कभी छोटा ना बने। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उस गज का इस्तेमाल किया है जो आत्मा को छोटा ना बनने दे। यह सच की उनकी अपनी परिभाषा थी। मगर जब हमारे यहाँ, जब हम अपनी हिंदी की आत्मकथाओं की बात करते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी अनुवाद में बहुत सारी रचनाएं आती हैं। हेलन केलर की हमारे यहाँ सबसे बड़ी आत्मकथा चली, खुद गांधी जी की आत्मकथा हुई, अनेकों अनुवाद हमारे यहाँ बंगला से हुए,
1: पावलो
2: मराठी
1: नेरुदा
2: से
1: की
2: हुए।
1: शानदार आत्मकथा
2: जी हाँ,
1: है।
2: मगर हमारे यहाँ कम लिखे जाने की आत्मकथाओं की यदि आप देखें तो उसकी मात्रा

0: उसका परिमाण जो है वो कम होता है। इसके कारणों पे जाना चाहिए। हाँ। और उन कारणों पर यदि हम जाएं सबसे पहले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद उस बारे में क्या कहते हैं। दरअसल सब लोग चाहते थे कि प्रेमचंद जो बहुत ज़्यादा लिखते थे कि वो कुछ ना कुछ तो आत्मकथाओं के बारे में दृष्टिपात करते, प्रयत्न करते। यह हमारी बातचीत के लिए एक सूत्र वाक्य हो सकता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गढ़े तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। दरअसल हमारे अंदर एक बात ये रहती है कि हम जब किसी के जीवन में झांकें तो उसमें उसके ऐसे प्रसंग मिलें जो बहुत निजी हों। मैं मार्क्वेज़ के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हर व्यक्ति का जीवन तीन तरह से होता है। एक होता है पब्लिक यानी सार्वजनिक जीवन होता है, दूसरा होता है प्राइवेट यानी व्यक्तिगत जीवन होता है, और तीसरा होता है सीक्रेट जीवन, वह जीवन जो आपके परिवार को भी नहीं मालूम होता। दरअसल जो आप किसी को नहीं बताते वह सीक्रेट जीवन के लिए एक पाठक आवागमन का प्रयत्नशील होता है, और इसके लिए किस में कितनी हिम्मत है ये देखने की बात है। मैं चाहूँगा ये बताना कि उग्र ने जो अपनी खबर लिखा वह मैं समझता हूँ कि आत्मकथा की शुरुआत होती है।
1: हाँ, हाँ।
0: और उसमें यदि आप शुरुआत से ही उसे देखें तो उनने लगभग आधा, बहुत छोटी सी किताब है वो आत्मकथा, बहुत बड़ी नहीं है, मगर वो कैसे उनके बदचलन भाइयों ने उनको बदचलन बनाया, कैसे रामलीला में काम करने वाले लोग बदमाश होते हैं और उनका जीवन बर्बाद किया। मगर एक खूबसूरती है कि वहाँ से एक लड़का 19-20 साल का निकलता है और पराड़ कर उनकी रचनाओं को ठीक करके और उस में देते हैं,
1: आज में
0: देते हैं। और आप देखेंगे कि अंत में जाकर निराला से बातचीत होती है मतवाला के ऑफिस में, तो वो किसी से मारपीट तक करते हैं एक प्रकाशक से, और उसके लिए सेठ से, जो मतवाला के
1: महादेव भाई
0: जी, तो सेठ जी से वो ये कहते हैं उग्र कि निराला ही नहीं, क्योंकि निराला को निकाल दिया गया, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तब निराला ने कहा कि यहाँ केवल एक ही मर्द है, वो उग्र जी हैं। तो आत्मकथा आपको ये बतलाती है, जो संभवतः आपके जीवन का, साहित्य का एक इतिहास आपको देती है। मगर इस बात को हम लोग आगे करेंगे और इस बात पे देखेंगे, मगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजेंद्र जी, कि राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, हर लेखक जब अपना आत्मकथा लिखता है तो उसके टारगेट भी होते हैं। उसमें राजेंद्र यादव के टारगेट थे, उसमें एक खास किस्म का रस और लास्य दिखाने की प्रयत्न भी रहे रमाकांत जी। मगर जब मन्नू भंडारी ये कहती हैं कि मुझे, उन्होंने फिर एक कहानी यह भी कर आत्मकथा लिखी, और यहाँ इस बात के लिए समीचीन होगा जब उन्होंने कहा कि यह जो एक कहानी यह भी है वह लोकप्रिय लेखकीय कथा यात्रा और आत्मकथा का घाल मेल है। और मुझे ये इसलिए करना पड़ा कि राजेंद्र यादव ने स्त्री प्रसंगों को एक तरफा लिखा है और मैं दूसरा सच भी पेश करना चाहती
1: हूँ। हाँ, नहीं, मैं शशांक आपकी बात से एक दिलचस्प बात मुझे याद आई। हेमिंग्वे ने अपने किसी साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि आप आत्मकथा कभी लिखेंगे, क्योंकि हेमिंग्वे का जीवन बहुत उबड़ खाबड़ था और उसमें कई घटनाएं हैं, लेकिन हेमिंग्वे ने फौरन कहा, और वो वाक्य मुझे अभी तक याद है, उसमें हेमिंग्वे ने कहा, ना बाबा ना, आत्मकथा यानी झूठ का पुलिंदा।
0: ये बड़ी आश्चर्य की बात है राजन जी कि हेमिंग्वे ने आत्महत्या क्यों की, इसलिए कि उनको लगा कि उनका पौरुष उनके जीवन में और उनके साहित्य में चुक गया। ऐसे बहुत कम लेखक होंगे जिसे वो एक अपनी मर्दानगी को और अपने लेखकी मर्दानगी को अपने जीवन के लिए चुनौती मानते हैं।
2: हाँ। एक बात ये है राजेंद्र जी, जो शशांक कह रहे थे उस बात को मैं थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है ये अभी तक भी एक ऐसा बंद समाज है जहाँ बहुत खुलकर बातचीत करना आज भी खतरे से खाली नहीं है। हमें याद है कि जब एक हमारे बड़े पत्रकार ने अपने अनुभव जीवन

0: के जो बस्तर में रहते हुए उन्हें प्राप्त हुए वो लिखे तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमारा समाज आज भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने तो आत्मकथा विशेषांक भी निकाला। प्रसाद जी से जब उन्होंने कहा तो उनकी प्रसाद जी ने कविता लिख के भेजी हाँ, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे मेरी भूली आत्मव्यथा, ऐसा कुछ है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण है हमारे समाज में कि आत्मकथाओं का लेखन तब ज़्यादा शुरू हुआ जब मराठी के कलम से प्रभावित होकर हमारे यहाँ भी विमर्श शुरू हुआ और साथ ही स्त्री का जो सशक्तिकरण हुआ, औरत में जब ये हिम्मत आई या ये जब साहित्य में प्रचलित हुआ कि स्त्री अपनी व्यथा को स्वयं कहे। सहानुभूति का साहित्य नहीं चाहिए, स्वानुभूति का साहित्य चाहिए। तब हम देखते हैं कि जूठन जैसी आत्मकथा आई,
1: अद्भुत है,
0: वाल्मीकि हाँ। की मेरा बचपन मेरे कंधे पर शिवराज सिंह की आई और मैं समझता हूँ मुर्दहिया, ये तो अपने आप में अपूर्व है। स्त्रियों ने जब लिखा, अपने विषय में लिखा, कुछ तो ऐसी किताबें हैं जिनके नाम मैं भी भूल गया हूँ और अक्सर याद नहीं किया जाता। चंद्रकिरण सोनरेखा, मनु भंडारी का तो बताया आपने, मैत्रेयी पुष्पा की किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, गुड़िया भीतर,
1: गुड़िया भीतर गुड़िया।
0: तो क्या है कि स्त्रियों ने जब अपने विषय में लिखना शुरू किया तो उन्होंने भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के भय और संशय को थोड़ा बढ़ा कर लिखा और उसकी वजह यह है कि हमारे समाज में उस तरह का भय उनके अंदर मौजूद था। तो स्त्रियों ने जो लेखन किया उसमें मैं एक दूसरा वर्ग शशांक की करता हूँ, देखिए आप उससे सहमत हो ना हो। हम अक्सर लेखकों की, साहित्यकारों की आत्मकथाओं की बातचीत करते हैं। अभी शुरू में जो आलू आधारी की बात आपने की, एक बर्तन मलने वाली लड़की बचपन में जिसकी शादी कर दी गई, उसके अंदर जब पढ़ने की इच्छा जागृत हुई तो प्रबोध कुमार जी ने मतलब उसकी तरफ से लिखा, बंगला में उसका वर्षन बाद में आया है। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है अशोक सेक्सरिया की, ड्राइवर की पत्नी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। वो पढ़ना नहीं जानती थी, अशोक सेक्सरिया जी ने उनको प्रेरित किया कि आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके पति ने भी उसको प्रोत्साहित किया और वो आत्मकथा उन्होंने लिखी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आत्मकथाओं का भी एक संसार है जिस पर हम फिर और बातचीत कर लेंगे।
2: रमाकांत जी, ऐसा है कि आत्मकथाओं के बारे में साहित्यकारों की बहुत अच्छी राय नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद मिश्र आत्मकथाओं के बारे में क्या कहते हैं और संभवतया ये लगभग बहुत सारे लेखकों के लिए भी ये संभव हो सकता है। मैंने प्रेमचंद के बारे में आपको बताया कि यदि जीवन में संघर्ष एक उबड़ खाबड़ नहीं हो तो वो आत्मकथा का आनंद नहीं होता। मगर यदि गोविंद मिश्र यदि ये कहें कि साहित्यकार इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि उनके उतार पर उनकी विशेष विधाओं में लिखना कम होता चला जाता है। जब उतार आपका जब होने लगता है और उसमें जिसमें आपको महारत हासिल थी और तब आप सीधे सीधे अपनी कहानी लिखते चले जाते हैं, आत्मकथा लिखते हैं और साहित्यकार होने का भ्रम बनाए रखते हैं।
0: आप इससे सहमत हैं क्या?
2: मैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ठीक बात है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप लेखक हैं शुरुआती दौर में, केवल एक सहमत असहमत की बात इसमें नहीं है, इसमें वह चीज़ देखनी होगी कि आखिर आप चाहते क्या हैं एक पाठक के रूप में और लेखक क्या दे रहा है। तब ये लेखक का यह एक जो वर्जन है, यह जो एक उनकी तरफ से दी गई एक दलील है, ये भी गलत नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भीमबेटका है, वहाँ हजारों साल पहले लोगों ने अपने चित्रों से अपनी जीवन की आत्मकथा रेखा चित्रों से पेश की। और उसके बाद यदि आप कहें तो मैं जगदलपुर में रहा हूँ और उस जगदलपुर में आदिवासी अपनी मृत्यु के बाद कब्र पर एक सागौन का एक 6 फीट का लगा देते हैं स्तंभ, उस सर्कल उसे वे लोग कहते हैं, और उसमें देखिए तो बड़ा आनंद आप

0: को आएगा कि उसमें काला चश्मा, छतरी, एक शेर या उसने जीवन में जो भी कुछ किया है वह उस पे आकृतियों में दिया है। जिनके पास भाषा नहीं होती तो वे आकृतियों से अपनी बात करते हैं। हमारे पास भाषा है मगर हम अपनी भाषा में ही अपनी चीज़ों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा ये पूरे विश्व साहित्य में कहा गया कि फ्रेंच महिलाएं सबसे ज़्यादा आत्मकथाएं लिखती हैं। एक ना एक आत्मकथा फ्रेंच महिला लिखती है और अनेकों फ्रेंच महिलाओं की कथाएं छपती हैं जो आत्मकथा की हैं। मगर जो हमारे यहाँ लेखक या लेखिकाएँ लिखते हैं, मैं उसमें एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारे साहित्य में हमेशा कोई ना कोई एक विचार साहित्य के लिए प्रेरणा और स्तंभ के रूप में होता है। स्वतंत्रता के पहले का आप देख लीजिए तो आज़ादी, गांधीवाद, मार्क्सवाद, फिर फ्राइडियन, इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा। मगर जैसे ही ग्लासनोस की समाप्ति के बाद, खुलेपन के बाद, आपके पास जब मार्क्स की विचारधारा नहीं रही खासतौर पर साहित्य में, तो महिला विमर्श जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। आप देखिए हर साहित्यिक पत्रिका के आपको अंक इसी पर ही मिलेंगे। और इससे हुआ ये है कि यदि एक स्त्री को पुरुष से अलग हटना है तो उसे पुरुष के कहीं ना कहीं उन सारे विचारों के बरक्स प्रतिरोध में खड़े होना है। हर समय थोड़ी प्रतिरोध होता है, है ना? और इसलिए यदि आप देखें तो प्रभा खेदान की अन्या से अनन्या, वह किताब लोगों के बीच में क्या हुई, उसमें जो उनके पुरुष प्रसंग थे, या खुद मनु भंडारी की आत्मकथा के बारे में भी है कि यदि आपको चीज़ रुचती नहीं है तो क्या आप उसमें फ़ायदे के लिए लगी रहीं या आप उसके प्रतिरोध में बाद में क्यों आईं, यह एक प्रश्न आता है। और फिर यहाँ हम जाते हैं राजेंद्र जी की बात पर कि जहाँ पर आप किसी चीज़ में संतुलन नहीं है, आप किसी से पक्षपात पूर्ण विचार रखते हैं, तो वह आत्मकथा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता।
1: आपकी इस वो एक कृति से की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अन्या से अनन्या को पढ़ते वक्त लगातार मुझे ये लगता रहा कि क्या हम अपनी ही गलतियों को और ग्लोरीफाई करें, ऐसा तो नहीं है कहीं उस आत्मकथा में, जो कि मुझे बार बार लगता था। मैं राजेंद्र जी एक ये बात कहना चाहता हूँ कि साहित्यकारों से अलग हटके जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं उससे हमारे संसार के बहुत से कोने उजागर होते हैं
0: जी।
1: कुछ किताबें जो मैंने देखी हैं उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे पत्रकार है, वो अपने ढंग से दुनिया को देखता है। यही मायाराम जी ने जो आत्मकथा लिखी धूप छाया के दिन, कांति कुमार जैन ने जो लिखा बैकुंठपुर से मैं बचपन, अभी एक आत्मकथा मैंने पढ़ी इंदिरा मिश्रा मेरे जीवन का प्रशासनिक काल, तो वो एक अपने ढंग की एक सूचनाओं से हमें वाकिफ कराता है। लीना महंदेले की किताब आई है एक मेरी प्रांत साहबी के दिन, बलराज साहनी की आत्मकथा को जैसे हम याद करें, एक फिल्मी दुनिया का एक पूरा
2: मेरी फिल्मी
1: जो वातावरण है, मेरी फिल्मी आत्मकथा ही नाम रखा उसमें उन्होंने। एक वैज्ञानिक हैं, जानते होंगे डॉक्टर आत्माराम, उन्होंने आत्मकथा लिखी अपने क्षेत्र के एक सामान्य लेखक, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते, संतोष खरे जी ने एक किताब लिखी, मैं छुपाना जानता गर, पूरा जो अदालती माहौल है उसमें खुल कर वो सामने सारी बातें रखते हैं और हम चमत्कृत होते हैं कि हमारी ही दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आत्मकथा लेखन का अपना एक महत्व है। और
0: रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मकथाओं का संख्या है, आत्मकथाओं की संख्या कविता और कहानी की तुलना में कम है।
1: हाँ,
0: जबकि ये अधिकतम लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये सृजनात्मक गद्य से इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज़्यादा हो सकता था। और इसका तरीका मुझे लगा हिंदी साहित्य में ये है, एक बात जो मैंने कही कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, और जिसे कहा जाए कि हम अपनी आत्मकथा को जहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ आपके पास पर्याप्त कंटेंट और तथ्य नहीं है।
1: शिकारी के पास होता है, उसे कहते हैं ना,
0: किसी ने लिखा कि हजरत अकबर जहां में कुछ कारो नुमाया कर

0: गए, पैदा हुए, बीए किया,
1: हाँ,
0: क्लर्की किए और मर गए।
1: मर गए।
0: ऐसे से उनके पास चीज नहीं आती। तो ऐसे वक्त पर मेरे को ये लगता है कि एक नया तरीका निकाला गया, और ये नया तरीका निकला कि आप आत्मकथा की बजाय संस्मरण लिखें। बल्कि मैं एक कैटलॉग देख रहा था किसी का कि आत्मकथात्मक नुमा संस्मरण, ये उनकी हेडिंग ही है। और इसमें यदि आप देखें तो इसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ। और यदि इस तरह के कामों को देखें तो आपने देखा होगा कि सारिका ने गर्दिश के दिन एक शीर्षक शुरू किया, किताबें हुई, और स्वयं प्रकाश की किताब भी, इसे भी हम आत्मकथा ही मानेंगे, हम सफ़रनामा, जिसमें उन्होंने अपने और अपने
1: दोस्तों के
0: लेखकों के
1: विषय में
0: बारे में
1: तमाम
0: किया।
1: लिखा है।
0: और रमाकांत जी, मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत यदि एक तरफ हम अपनी खबर से करते हैं तो दूसरी तरफ हम महादेवी वर्मा की तीन किताबों का नाम
1: हाँ, अतीत के
0: लेंगे,
1: चलचित्र।
0: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। और ये पहली बार हुआ कि एक स्त्री का आपको मन दिखाई पड़ता है इन तीनों किताबों में, और एक स्त्री मन आपको एक आत्मकथा के रूप में सामने लाती है, जिसमें आप निराला के भव्यता को भी देखते हैं, तो एक छोटे से पिल्ले को,
1: हाँ
0: कुत्ते
1: हाँ
0: को,
1: जो
0: खरगोश
1: जानवरों
0: को,
1: को देखा,
0: जानवरों
1: जो जो
0: को, तो ये भी तो आपके
1: घर
0: जीवन
1: में
0: का
1: काम
0: एक
1: करने वाली
0: एक
1: जो
0: एक
1: औरत है।
0: महत्वपूर्ण किताब का और मैं जिक्र करना चाहूँगा शशांक, भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है
1: जी हाँ
0: आज का अतीत,
1: जी
0: ये उसका शीर्षक ही बहुत व्यंजनात्मक, उसकी
1: जी
0: व्यंजनाएँ बहुत हैं,
1: जी हाँ
0: है ना। आज का अतीत लिखना तो मुझे अतीत के बारे में है जो
1: हाँ
0: मेरे साथ हुआ,
1: मजो
0: लेकिन
1: आज
0: मुझे
1: हुआ
0: आज लिखना है उसे,
1: आज जो
0: और
1: समस्या
0: आज आज लिखते हुए मैं उसको कैसे देखता हूँ और उस अतीत ने मेरे आज को कैसे प्रभावित
1: कैसे।
0: किया है।
1: हाँ
0: जैसे हम पाब्लो नेरुदा के मेमोयर्स की हम बात करें, है ना, या हम गोरकी की जो
1: हाँ जो
0: तीन
1: तीन
0: किताबें
1: तीन
0: हैं,
1: है
0: मेरा
1: उनकी,
0: बचपन,
1: मेरा विद्यालय, मेरे
0: मेरे
1: विश्वविद्यालय, जय
0: विश्वविद्यालय, है ना, जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय, ये चीज़ों को समग्रता में देखने की बात करते हैं। उसमें उसमें उस आत्मकथा में स्त्रियां भी आती हैं, स्त्रियों का विमर्श भी आता है, और जो आत्मकथा लेखक है वह भी आता है।
1: मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँगा कि आत्मकथात्मक में एक हम बात कर सकते हैं कि जो आत्मकथा का समय यदि लिखे जाने में नहीं है तो वह डायरी और संस्मरण, ये दो के बारे में है, और उन्हें दो हिस्से में लिखा जा सकता है। जैसे कांति कुमार जैन ने
0: किया
1: कहा
0: है।
1: कि दूसरों के बारे में लिखा, तो वो भी उनका एक आत्मकथा का हिस्सा हो सकता है जो अपने साथ बिताए क्षणों के हाँ,
0: बारे में
1: लेकिन
0: लिखे
1: वो
0: हैं।
1: आत्मकथा को सहायता भर करता है, पर मेरे ख्याल से वो संस्मरण और
0: एक
1: आत्मकथा में
0: हाँ,
1: एक एक थ्रेड तो है।
0: एक अपने समय के इतिहास को लिखता है, और अंततः आप अपने उस जीवन में प्रवेश करते हैं जहां आपका प्रिय लेखक क्या कर रहा है ये जानते हैं। इसके लिए मैं आखिरी में, हालांकि वो हमारे यहाँ के नहीं है, मार्क शागाल एक बहुत बड़ा हाँ,
1: पेंटर रहा है, उसकी आत्मकथा है, उसका हिंदी अनुवाद अखिलेश ने बहुत
0: अखिलेश ने
1: अच्छा
0: किया
1: किया
0: है
1: है।
0: जी।
1: उसके 5 लाइनों से इसकी पकड़ अपने को महसूस होती है। अपनी माँ के बारे में लिखता है, कोई शब्द नहीं, सब कहीं मेरे भीतर है, छटपटाहट और तुम, मेरी यादें तुम्हारी, तुम्हारा फीकापन, तुम्हारे हाथों का दुबलापन, तुम्हारे सूखे अस्थि पंजर, मेरी हलक में जान कहाँ से ले आते हैं, किससे प्रार्थना करूं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो कुछ है मेरे भीतर है, मैं इसी भीतर को बाहर तक लाने की प्रक्रिया को हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। आज रमाकांत जी और शशांक जी, आप स्टूडियो में आए और इस पर चर्चा में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज

0: नाराज हो तुम।
1: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी।

0: प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाक नामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाक नामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाक नामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आगे
1: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
2: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
1: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
2: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
1: शहर जा रहा हूँ, एक महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
2: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूँ?
1: नूरी नूरी, मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
2: बांधती हूँ।
1: और सुन, पहले एक कप चाय पिला।
2: ये लो चाय।
1: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है, है? ये चाय बनाई है तूने, ये ले।
2: अब चाय में क्या खराबी थी?
1: चाय में क्या खराबी थी? हाँ, जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी। ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे?
2: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
1: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहाँ क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
2: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
1: जुबान लड़ाती है।
2: हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा नामर्द।
1: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
2: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
1: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
2: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
1: नूरी नूरी, अपनी जुबान बंद कर

0: मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है, हैं?
1: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूं जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
0: नूरी, नूरी तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान। अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
1: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूँ तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
0: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, हैं?
1: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो। वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी, और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
0: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
1: अब ऐसा नहीं होगा। जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
0: नूरी, मर्द के बिना औरत के बिसाथी क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
1: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
0: चल चल, अपनी बेतुकी बातें छोड़ और घर का काम कर। चल, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
1: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
0: क्या, तलाक?
1: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
0: पागल हो गई है क्या?
1: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा।
0: नूरी, रुको रुको, नूरी नूरी।

0: अरे फाता, फाता जरा सुनना।
1: आप कहो।
0: फाता, तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ, कहा तो था। कोई नजर में है क्या?
0: अब है तो, मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
0: अरे वही, अरे अपने रसूल मियाँ, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
0: फाता, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियाँ से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
0: कमाता तो है, और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा फाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, अब वो रसूल मियाँ से मिल जरूर लेना फाता। खुदा हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: मामिया, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ कहो, क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे,

0: अभी तो अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
1: अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है, और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
0: हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है। जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है। खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
1: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
0: हाँ, वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
1: हाँ, पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
0: हाँ, पर नसीब ही खराब था बेचारी का। निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
1: क्यों?
0: अरे, अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो। सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी। अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
1: चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
0: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा,
1: जी
0: सारे के बारे में सोचना। मैं फिर आऊंगी कभी, अभी चलती हूँ बेटा।
1: जी सोचूंगा। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: मियाँ रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे? फाता
3: अब बस यूं ही आई थी।
2: यूं नहीं आ सकती मियाँ, उधर जरूर कोई काम रहा होगा।
3: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
2: सारे की बात?
3: हाँ
2: अभी अभी तो उसका मुश्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
3: तुम जानते हो उसे?
2: बहुत अच्छे से
3: कैसी है?
2: देखोगे तो देख तो रह जाऊंगे मियाँ,
3: अच्छा
2: जन्नत की परी लगती है।
3: हाँ?
2: एक बार उसको देख ले, उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियाँ।
3: अच्छा तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूँ?
2: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियाँ,
3: अच्छा
2: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी। वो खुश होगी तो बात आसानी से पड़ सकती है।
3: फिर तो समझो मियाँ कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
2: फिर तो मियाँ बात बन गई।

0: अरे अरे भाई फजी,
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई, ले ये सामान रख लो। लो तो। हाँ भाई, वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा दे दी है, उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा।
1: हाजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: अरे भाई, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है।

0: देखो फजी, साराय का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तहान है ये। मुश्ताक कमजोर ना पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं घर में ही हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठो। हाँ भाई कहो, कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी, चाय तो पिलाओ।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाईजान अल्लाह के रहम व करम से सब ठीक है। आप बताएं, सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूं अकरम। औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
2: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
2: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
2: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
2: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: साराय का दूसरा निकाह?
2: हाँ।
0: किसके साथ?
2: अब रसूल मियाँ को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से साराय का निकाह?
2: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल एक नंबर का लफंगा आदमी है?
2: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब फाता को पैसे भी देता है, और इसी लालच में आकर फाता साराय का निकाह रसूल से कर रही है।
1: चाय, किसका निकाह हो रहा है?
0: अरे साराय का निकाह हो रहा है।
1: क्या सारे का निकाह? किसके साथ?
0: रसूल के साथ।
1: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
0: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका,
2: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
1: नूरी ने तलाक ले लिया?
2: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
1: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
2: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल, नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया, आखिर उसे सुखी क्या था। रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता, और वहां शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था, और नूरी यहाँ इंतजार करती थी। और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को बुरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया।

0: जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी, अब बताते हुए भी जुबान कांपती है। अल्लाह माफ करे।
1: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी? उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
2: अजी, पर अब पाता तो उसी जालिम रसूल से सारे का निकाह कर रही है ना।
1: अरे लालच में आकर वो सारे की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
0: लेकिन सारे की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
1: वो कैसे?
0: भाईजान, ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे, और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने सारे से छुपाकर मुश्ताक से तलाक ले लिया, और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसा दे।
1: अपनी खुशी के लिए फाता सारे की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी है।
2: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। वो सारे के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक सारे को कभी तलाक नहीं देता।
0: ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाईजान।
1: अरे भाई, हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
0: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और सारे तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
2: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाईजान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
1: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो। और देखना, एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
2: अजी, यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है वो तो मजे से जुल्म करता है, और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है। यही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
0: अच्छा भाईजान, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
1: अच्छा, और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
0: खुदा हाँ।
2: सुनो, हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
1: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो, वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
2: हाँ, पर हकीम जी के पास जरूर जाना, और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ। मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
1: पता करता हूँ, तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
2: हाँ, अभी लाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर अभी आप कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी सुन रहे थे। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। इस ढांचे में निवारक, पुनर्वास, उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल शामिल है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए राशि स्वीकृत की गई। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की अदालत में पेश किया। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

सीबीआई मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुनेंगे।

जीतेंगे हम ये वादा करिए, कोशिश हमेशा ज़्यादा करिए, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करिए। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे आकाशवाणी की गौरव यात्रा पर, जो अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। लगभग एक सदी का यह सफ़रनामा बेहद दिलचस्प है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे डिजी लॉकर के बारे में, जानेंगे कि कैसे आप कागजात को संभालने की टेंशन को कम कर सकते हैं। साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

आवाज़ों का एक ऐसा सफ़र जो 9 दशकों से जारी है, हर दिल तक पहुंचने की जिसकी अपनी जिम्मेदारी है। कभी खबर बनकर, कभी गीत बनकर, कभी प्रेरणा की कहानी है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन जिसकी पहचान आज भी उतनी ही पुरानी है। तरंगों पर सवार होकर जिसने पूरे देश को जोड़ा है, वह और कोई नहीं, हमारी अपनी आकाशवाणी है। साथियों, जून का ये पहला हफ्ता अपने साथ एक खास खुशी लेकर आया है। कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून को हमारी अपनी आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करने जा रही है। 9 दशक यानी पूरी 90 साल का यह बेमिसाल गौरवशाली सफ़र। साथियों, यह सफ़र सिर्फ समय का नहीं बल्कि लोगों के विश्वास, प्यार और साथ का सफ़र है। एक समय था जब न मोबाइल था, न इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। तब दूर दराज गाँव में बैठे किसी बुजुर्ग से लेकर शहर के नौजवान तक सबकी सुबह इसी एक परिचित आवाज़ से होती थी, यह आकाशवाणी है। और बस इस वाक्य के साथ शुरू हो जाता था खबरों, जानकारियों, गीत संगीत और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सिलसिला। दोस्तों, आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, यह उन करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी संस्था है जिसने 90 वर्षों तक लोगों के जीवन में अपनी खास जगह बनाए रखी है। किसी ने इससे देश दुनिया की खबरें सुनी, किसी ने अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लिया, तो किसी ने नई बातें सीखी। कई लोगों के लिए यह मनोरंजन का साधन था, तो कई लोगों के लिए जानकारी और मार्गदर्शन का भरोसेमंद साथी। यही कारण है कि 90 वर्षों का यह सफ़र केवल आकाशवाणी का नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी है जिन्होंने इसे सुना,

सराहा और अपना प्यार दिया। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच का यह रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत बना हुआ है। वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और इसका आकर्षण आज भी हमारे दिलों में वैसा ही जिंदा है। दोस्तों, यह मंच कभी पुराना नहीं होता, बल्कि हर दौर के युवाओं के साथ और भी नया हो जाता है। आज आकाशवाणी न सिर्फ रेडियो सेट पर उपलब्ध है, बल्कि न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन, OTT वेव्स और DTH के ऑडियो चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आकाशवाणी के इस आने वाले ऐतिहासिक पड़ाव के लिए आप सभी श्रोताओं को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आपके इसी प्रेम और अटूट भरोसे ने हमारी इस यात्रा को इतना आनंददायक और यादगार बनाया है। इसी सुंदर तालमेल और अपनेपन के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक ऐसी सुविधा की जिसने हमारे ज़रूरी दस्तावेजों को संभालने का तरीका काफ़ी आसान बना दिया है। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले हों और अचानक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वह दस्तावेज आपके पास ना हो तो क्या होगा? ऐसी ही परेशानियों को कम करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है डिजी लॉकर। साथियों, डिजी लॉकर आपके स्मार्टफोन के अंदर रहने वाली एक ऐसी सरकारी डिजिटल तिजोरी है जहां आपके सारे जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रहते हैं और

जरूरत पड़ने पर कभी भी कहीं भी आप उन्हें अपने मोबाइल में देख या साझा कर सकते हैं। अब कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचकर फ़ोन की गैलरी या गूगल ड्राइव में भी तो रख सकते हैं, फिर डिजी लॉकर ही क्यों? तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। कई जगह पर अगर आप गैलरी से फ़ोटो दिखाएंगे तो शायद वो मान्य ना हो, जैसे एयरपोर्ट्स पर, लेकिन डिजी लॉकर ऐप से दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स सरकारी स्तर पर मान्य होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स आप खुद अपलोड नहीं करते, बल्कि वो सीधे जारी करने वाली संस्था जैसे आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या आरटीओ ऑफिस से आपके अकाउंट में डिजिटल रूप से वेरीफाई होकर आते हैं। और आईटी एक्ट के तहत इसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से मुफ्त है, सुरक्षित है और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस अपने आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर की मदद से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो अब कागजात को संभालने की इस चिंता से पाइए मुक्ति, क्योंकि डिजिटल दौर की यही है सबसे बेस्ट युक्ति। आशा करती हूँ कि आप आज ही अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने दस्तावेजों के खोने या खराब होने की चिंता को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। चलिए, ज्ञान और तकनीक की बातें तो हो गई, अब वक्त है थोड़ा सा गुनगुनाने का। आइए रुक करते हैं आज की शाम के अगले बेहद खूबसूरत नगमे की ओर।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइन ग्रेजुएट लेवल के तहत 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर

सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ और ऑडिटर जैसे बड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खुशी और गम हमारी ज़िंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करेगी, बशर्ते आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को ढूंढिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज के दौर में न जीतना ज़रूरी है और ना ही हारना ज़रूरी है, ये खेल ही लाजवाब है, इसे बस खेलना ज़रूरी है। इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बशर्ते आप ज़रा हिम्मत तो करें, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप ज़रा कोशिश तो करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं कीर्ति मीना अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।

0: अभी आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना

0: भेजे और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सुनिए अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल कहीं भी कभी भी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। वॉर फिल्म से ये गीत सुनिए। विशाल ददलानी बेनी दयाल की आवाज़ में कुमार के लिखे हुए बोल हैं, जिसे संगीत में पिरोया है विशाल एंड शेखर ने।

और अब सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज़ में स्त्री टू से ये खूबसूरत गीत अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ, जिसे संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। फिल्म से अगला गीत सुनिए, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल और प्रीतम ने इसे संगीत दिया है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना 2026 को स्वीकृति दी। इसके माध्यम से 48.32 लाख निजी संपत्ति धारक वैधानिक अधिकार पाकर मालिक बन जाएंगे। बैठक में प्रदेश के चहुमुखी विकास, जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल 21,485 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं एक साथ काम कर रहे हैं। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें

0: इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें, ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
0: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी,
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: अश्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे

0: श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।

0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
1: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो
5: अरे
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो
7: अरे चलो चलो चलो चलो मुझे
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
9: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद

0: वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा।
5: हाँ,
4: इंजेक्शन लगा दूँ?

0: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर, ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
4: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें

0: ये कहते हुए सुना।
1: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल,
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय है खिलौना उद्योग और पारंपरिक हस्तशिल्प कला।
5: नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के सीहोर और बैतूल जिलों में पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं को जीवंत रखा गया है। स्थानीय कारीगर अपनी कला के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीहोर जिले के बुदने की। यहाँ दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौनों का उद्योग बदलते समय के साथ भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। माना जाता है कि ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना है और विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रही हैं। बुदनी विशेष रूप से अपने रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग कर खिलौने, लट्टू, छोटी गाड़ियां, रसोई सेट, झूले, सजावटी वस्तुएं और घरेलू उपयोग की सामग्री तैयार करते हैं। इन उत्पादों की मांग प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी बनी हुई है। इस पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को आगे बढ़ाने में बुदनी के कारीगरों और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बारे में हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान ने स्थानीय कलाकारों और व्यापारियों से बातचीत की।
6: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। मैं बुदनी के लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़ी महिला कामगार हूँ। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे बनाए आकर्षक खिलौनों की मांग प्रदेश और देश तथा विदेश में खूब हो रही है। अब हम इस बात पर गर्व अनुभव करते हैं कि सरकार के

0: संयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। हमारे क्षेत्र में जो खिलौना क्लस्टर खोला गया है उससे हमारे बनाए खिलौनों की ब्रांडिंग देश और विदेश में हो रही है।
1: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। मैं पीढ़ियों से बुधनी शहर में खिलौने बनाने का कार्य करता चला आ रहा हूँ। ये खिलौने जंगल में उगने वाली दूधी नाम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टॉल रेल मंत्रालय द्वारा बुधनी के खिलौनों का लगाया गया है।
2: महिला व्यापारी कंचन बता रही हैं।
3: बुधनी के लकड़ी के खिलौने जो कि आज केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये जो खिलौनों का व्यवसाय है, ये एक नवाबी शासन का इतिहास से जुड़े हुआ है। इसकी शुरुआत बुधनी के कई ऐसे परिवार हैं जिसमें स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद जी वैद, बालाराम जी, श्री राम गोपाल जी, इनके परिवारों के द्वारा की गई थी। और शुरुआती समय में ये भोरे और लट्टू पारंपरिक खिलौनों से ये शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़े हस्तशिल्प उद्योग के रूप में विकसित होता गया। बुधनी के खिलौनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दूधी की एक लकड़ी होती है, उससे बनाए जाते हैं, जो कि हल्की होती है, सुरक्षित और टिकाऊ होती है। और यही कारण है कि बुधनी के जो खिलौने हैं वो पूरे देश में और विदेश तक अपनी पहचान बना चुके हैं। पुणे, राजस्थान, मद्रास, ऐसे कई प्रांतों में ये खिलौने यहाँ के जाते हैं।
2: बुधनी का लकड़ी खिलौना उद्योग न केवल स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कारीगरी का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। और अब रुख करते हैं बैतूल जिले का। बैतूल से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित टिगरिया गाँव आज क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने और गांव को विशिष्ट पहचान दिलाने में वाघमारी परिवार की अहम भूमिका रही है। ये परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण करता है। इनकी बनाई गई हस्तशिल्प कृतियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। पारंपरिक भटेवा कला में दक्ष शिल्पकार बलदेव वाघमारे से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव ने बातचीत की।
4: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। और जो भरेवा कला जो है, बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से एक कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। और इस कला को देखने के लिए देश के अलग स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं। पुणे सिम्बायसिस के बच्चे एक टीम, गुजरात से NIT, लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे। धन्यवाद।
2: टिगरिया का ये क्राफ्ट विलेज इस बात का उदाहरण है कि समर्पण, परंपरा और रचनात्मकता के बल पर ग्रामीण क्षेत्रों की कला को वैश्विक पहचान दिलाई जा सकती है। तो ये थी प्रदेश के सीहोर और बैतूल जिलों की दो ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जहां परंपरागत हस्तशिल्प कला आज भी नई पीढ़ियों के माध्यम से जीवंत बनी हुई है और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध कर रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, विषय था खिलौना उद्योग और पारंपरिक हस्तशिल्प शिल्पकला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं स्ट्रीट डांसर से। ये गीत गाया है जास्मीन सैंडल्स कैरी संधू ने, जिसे लिखा है प्रिया सरिया ने और इसमें संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

शुभ मंगल, ज्यादा सावधान। फिल्म से अगला गीत सुनिए जारा खान अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। वायु मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है तनिष्क बागची और आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए सयोनी फिल्म से ये गीत, गाया है अरिजीत सिंह और ज्योति नूरान ने। इसे लिखा है अलौकिक राही और जुनून बैंड से है ये गाना, और इसमें संगीत दिया है जॉय अंजन जुनून बैंड ने।

अब सुनिए रेडी फिल्म से ये गीत, गाया है नीरज श्रीधर और अमृता काक ने, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं बोल और जिन्हें संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए क्रियो फिल्म से इला अरुण रोमी और सृष्टि तावड़े की आवाज़ में, जिसे लिखा भी है जूनो और सृष्टि तावड़े ने, और इसमें संगीत दिया है भार्ग और रोहित ने।

0: और इस गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की।

दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 पर और रात 10 फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। आज रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रस्तुत होगा और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में ख्याल गायन का आनंद लीजिएगा, जिसे पेश करेंगे रामदास मुंगरे और राग होगा गौड़ मल्हार। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 3 जून की सभा में। कल सुबह 6:05 पर भक्ति रस से सराबोर करने प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। कल सुबह 8:30 पर सुरमई सवेरा फिल्मी संगीत पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। सुबह 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 10 होगा जिले की चिट्ठी, आप सुन सकेंगे इसे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। इसके साथ ही सुबह 10:05 पर

महिला संसार प्रस्तुत होगा और कल सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम सुबह 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। और अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल दोपहर 12 बजे और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम

0: फोन करें गीत सुने। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकिया की 8वीं कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति में सुनेंगे। कल शाम 5:33, शाम 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा और कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्रामसभा। कल शाम 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे नाटक अशोक वन का पेड़ प्रस्तुत होगा जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी। इसके साथ ही कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। रमेश प्रेम द्वारा विचित्र वीणा वादन का राग होगा बिहाग। इसी के साथ आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी, स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है।

0: आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
1: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जाँच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
2: केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रिया प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
1: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादे बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनिनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा का

दोनों घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में यह समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में वाघमारे परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और बेल मेटल की अनूठी कलाकृतियां बनाता है, जिसमें मोर, चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ग्राम सभा सुनने वाले हमारे सभी श्रोता भैया बहने स्वीकारे अपनी अंशु बहन की नेह और स्नेह भरी राम राम। नौ तपा तू गए और पारा लुढ़क के 45 से 40 डिग्री पे आ गौ। कहूँ ना कहूँ गर्मी में राहत तो मिली है, मनो नौ तपा तू वो अच्छो नहीं होते जहाँ हमारे पूर्वज कहते हैं। कहूँ ना कहूँ जो पर्यावरण को पर्यावरण की बिगड़त स्थिति दर्शात है, इमें सुधार करबो हम सभी की बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है। जीवन में विकास करबो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, मनो विकास ऐसो होवे जिमें आवे वाली पीढ़ियों के लाने प्राकृतिक संसाधन बचे रहवे तो पर्यावरण में सुधार हो सकत है। यही के लाने हमें सोलर सिस्टम को अजमाओ चाहिए, अपनाओ चाहिए, पवन ऊर्जा पर जाओ चाहिए, कोयला को कम उपयोग करो चाहिए और सौर ऊर्जा को ज़्यादा

0: इस्तेमाल में लाओ चाहिए। कचरा को रिसाइकल करके फिर से उपयोगी बनाओ चाहिए, पानों की बचत करो चाहिए और पानों को सोई रिसाइकल करके फिर कहूँ उपयोग करवे योग्य बनाओ चाहिए। जैविक खेती को हमारे किसान भैयान को अपनाओ चाहिए, पेड़ पौधा लगाओ चाहिए यानी वृक्षारोपण पे ज़्यादा ध्यान दो चाहिए और एक आदत के रूप में अपनाओ चाहिए जिसे हम पर्यावरण को संतुलन बना सकें। खपत को कम करवो, बचत में ज़्यादा ध्यान देवो की ज़्यादा आवश्यकता है। जब बात हम कर रहे हैं कैसे आज हम आप उनसे चर्चा करन चाहते सतत विकास से पर्यावरण सुधार, कैसे पर्यावरण जब हुई है तभी हम अपनी आवे वाली पीढ़ियों को कछु अच्छो दे पे हैं जिसे वे अपना जीवन यापन करते हैं। जब हमारे हाथ में है जो हमारे पूर्वज हमें सौंप के गए हैं वैसे ही कछु हम अपने आवे वाली पीढ़ियों को दे के जावे। भैया हरो, एक और जरूरी बात जो हम आपसे करन चाहते हैं, खरीफ की फसलन की तैयारी शुरू हो गई है और हमें उम्मीद है हमारे भैया हरन ने मिट्टी परीक्षण करा लो हुई है और संगे संगे बीजन को उपचार सोई करा रहे हुई हो, कैसे बीजो उपचार बहुत जरूरी है। भैया हरो, जब बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जैसो बो हैं वैसो ही काट हैं, माने अगर हमें अच्छी फसल चाहने हैं तो हमें अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजन को चुनाव करने की जरूरत है और बीजन की गुणवत्ता बीजो उपचार को उपचार करके बढ़ाई जा सकत है। उपचारित बीजन को महत्व जो है भैया हरो के इसे फंगस नहीं लगत है फसल में, बैक्टीरिया नहीं लगत हैं, वायरस नहीं होते हैं और बीजों की कीटनाशक कोटिंग बीजों उपचार के दरमियान कर दी जाते हैं जिसे दीमक माहू थ्रिप्स जैसे कीड़ा लगवे वारे की संभावना फसलन में कम हो जाते है। फसल खराब होवे को 50% तक रिस्क कम हो जाते है। उपचारित बीज जल्दी और एक संगे अंकुरित होते हैं, ठंड ज़्यादा गर्मी ज़्यादा नमी सूखा झेलवे की ताकत बढ़ जाते हैं, मौसम की मार झेल पाते हैं बीज उपचारित बीजन को अगर हम अपनी खेतन में उपयोग करवें, पौधा मजबूत होते हैं और पाछू कीटनाशकन को प्रयोग सोई हमें नहीं करने पड़ते हैं या करने पड़ते हैं तो कम मात्रा में करने पड़ते हैं, संगे 10 से लेकर 20% तक पैदावार बढ़ जाते हैं। तो जेहती आज की जानकारी और अब बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कही कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लाने जानो जात है। प्रधानमंत्री ने कही कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दो है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करवे में तेलंगाना के विकास को पूरा समर्थन देवे को भरोसा भी जताओ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही कि शिक्षा लोगन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनावे को सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कही कि समाज के सभी वर्गन की प्रगति से ही देश को समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कही कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्हें प्रतिभाओं को पहचानवे और उन्हें आगे बढ़ावे के लाने उचित मंच देवे पे भी जोर दो है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसला लाए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लाने 21,885 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के पंजीकरण पे स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ करवे को निर्णय लो है। इसे लाखन भू खंड धारकन को बैंक ऋण लेवे में सुविधा मिले है और इको पूरो खर्च राज्य सरकार वहन कर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कही है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होके एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। ई ढांचे में निवारक, पुनर्वास, उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल शामिल है। उन्होंने कही कि देश में 182,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं के लाने प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे आज पंजाब के बठिंडा में एम्स

0: के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से हुई है, जितने इंटरसिटी सिटी और अंतर्राज्यीय मार्ग पर बसें चलाई जाए हैं। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों को संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1164 मार्गन पे 5206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। अभिनेत्री तुषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरीवाला सिंह को भोपाल की अदालत में पेश करो 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दो है। सीबीआई मामले की विभिन्न पहलुओं से जाँच कर रही है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित करो जय है। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतन को ये पुरस्कार प्रदान करे जय हैं। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतन को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतन को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार प्राप्त पंचायतन के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियन और उपलब्धियन पर प्रस्तुति भी दे हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलन में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनावे के लाने आज से शिक्षकन को विशेष प्रशिक्षण शुरू करो गए है। ई कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकन को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करो जय है। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलन में अन्य शिक्षकन को प्रशिक्षण दे हैं। इको उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनावो और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करवो है। बालाघाट जिला के ग्राम नांदी की महिला किसान श्रीमती प्रभावती हरिनखेड़े की तिल की वैज्ञानिक खेती अपना के अन्य किसानों के लाने मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उनने उन्नत बीजन और आधुनिक तकनीकन को उपयोग करके तिल की फसल उगाई है। कम पानी में होवे वाली ई फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। उनके सफल प्रयास को देख के आसपास के किसानों ने भी तिल की खेती अपना बिकलाने प्रेरित हो रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम को मिजाज बदलो भाव है। पिछले 8 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि को दौर जारी है, जिसे गर्मी और लू को असर लगभग खत्म हो गया है। जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार
0: भैया और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जा गणेश वंदना। जी ये गाँव है गीता पांडे ने।

0: भैया रो, आज एक बहुत अच्छी जानकारी हम आप और अंकलान लेके आए हैं एक विशेष कार्यक्रम के रूप में। काल दिनांक 1 जून 2026 को ग्राम रमासिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इके में रिकॉर्डिंग सहयोग है महेश सोनी को और जो जरूरी कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम अब लो आपके लाने सुनाइए।
1: लीजिए प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ग्राम रमासिया में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर हुए कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ग्राम रमासिया में विगत 1 जून 2026 को राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉ. प्रभुराम चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। एक माह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के दौरान किसानों को मिट्टी परीक्षण, उन्नत कृषि उपकरण, बीज उपचार, जैविक खेती तथा खेती में लागत को कम करने की जानकारी दी जा रही है। खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर किसानों को उन्नत कृषि बीजों की किट प्रदान की गई, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। इस अवसर पर खेती किसानी में हो रहे नवाचारों को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए।
2: मैं मेदिनी प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से। आज हम लोग यहाँ पर जो माननीय कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम है खेत बचाओ अभियान, जिसका आज से शुभारंभ हो रहा है। यह कार्यक्रम पूरा एक महीने चलेगा, जो कि 1 जून से 30 जून तक का प्रोग्राम है। तो आज ये शुभारम्भ का कार्यक्रम जो यहाँ पर ग्राम पंचायत सदालतपुर के अंतर्गत ग्राम रायपुर रमरशिया में हो रहा है, उसके अंतर्गत हम कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से आए हुए हैं। हमने देखेंगे तो हम अपने यहाँ पे अभी किसानों के लिए जो आगामी जो हमारी जो फसलें हैं खरीफ में, जो हमें जिन्हें हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, मिलेट्स के हमने अलग अलग रसामा की काकुन, ये सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं। और साथ में हम किसानों को खेतों को बचाने का उद्देश्य मतलब है कि हम खेतों को अपने किस तरीके से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले समय में भी हम अपने अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ मृदा को दे सकें और जिससे कि उसमें अच्छा उत्पादन हो। यही हमारे माननीय मंत्री जी का भी जो है सपना है कि हम खेत की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें और गांव-गांव में जा जा करके ये अभियान चलाएं कि हमारे खेत की जमीन को अच्छी तरीके से रखना है, उसमें हमें संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है जो हमारे जैविक उर्वरक हैं, जिनके अंतर्गत हमारे गांव में ज़्यादातर सड़ी हुई गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम अपनी भूमि को, अपनी धरा को बचाएं, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैं डॉक्टर उमेश चंद्र दुबे, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। हमारे संस्थान के द्वारा हरी खाद, जैविक खेती के लिए और उर्वरक संतुलित उपयोग के लिए बहुत विभिन्न प्रकार की मशीनरी का डेवलपमेंट किया गया है, जिससे कि हम खेत को, खेत में उर्वरक का कैसे उपयोग करें उचित संसाधन के द्वारा, उचित मशीन के द्वारा। ये हमारे संस्थान के द्वारा, जैसे रोटावेटर है, हरी खाद को अगर

0: मिक्स करना है खेत में, तो हमें रोटावेटर के माध्यम से उसको हम मिक्स कर सकते हैं और वो खाद एक तरीके से ऑर्गेनिक खाद का काम करता है और मिट्टी में बिल्कुल मिल कर करके प्राकृतिक खेती के तरीके वो हमारा फसल उगता है। दूसरा होता है अगर हम बुवाई करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा जीरो टिल ड्रिल मशीन का विकास किया गया है। बिना जोते हुए हम अगर एक्स्ट्रा मल्च को अगर खेत में छोड़ देते हैं तो हम बिना जोते हुए उस मशीन के माध्यम से हम सीधे बुवाई कर सकते हैं।
1: मैं डॉक्टर आर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से, मैं आज इस प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो खेत बचाओ अभियान सेव द फार्म कैंपेन है, ये पूरे एक महीने का प्रोग्राम है जो कि आज इसका शुभारंभ हो रहा है इस जगह से, रायपुर रामरसिया से, और ये 30 जून तक प्रतिदिन ये चलेगा, जिसमें कि देश के सारे संस्थान, सारे KVK यूनिवर्सिटीज और स्टेट डिपार्टमेंट के जो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सब मिलकर इसमें शरीक करेंगे। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उसमें कैसे हम कमी लाएं, तो इसके लिए सबसे पहला काम होगा कि हम लोग किसानों के बीच में जागरूकता फैलाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनके साथ किसान गोष्ठियाँ करें, ताकि अगर हम अपने मकसद में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को 25-30% भी कम करने में कामयाब हो जाते हैं, चूँकि हमारी आगामी खरीफ फसल की बुआई अब जून लास्ट से शुरू ही हो जाएगी, तो उसमें अगर हम 25-30% की भी बचत करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसके लिए विकल्प हमारे पास क्या है? तो उसके लिए हमारे पास विकल्प हैं कि हम या तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको कि जैविक खेती कहते हैं। तो अगर इन दोनों का हम समन्वय करें कि एक साथ ही जिसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, कि कहाँ हमें वर्मी कंपोस्ट, कहाँ हमें फार्म यार्ड मैन्योर और कहाँ हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, अगर हम इसको एक सम्मिश्रित रूप में एक साथ अगर प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की हम कमी को पूरी कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने खेत की अवस्था को, खेत की सेहत में कैसे हम सुधार ला सकते हैं। अगर हम इसी ढंग से अंधाधुंध प्रयोग करते जाएंगे तो आगामी 10 से 15 सालों के बाद हमारी खेत की स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि हम उसमें कुछ भी नहीं उगा पाएंगे, समझ लीजिए कि वो बंजर के लायक भूमि हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को बचाना है तो हमें आज से ही इस अभियान में पूरी तरह से शरीक होके इसको आगे बढ़ावा देके, और किसान भाइयों से अपील है कि वो कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें। धन्यवाद।
2: मैं कोमल प्रसाद भगत, उपसंचालक कृषि रायसेन हूँ, और जो आज का जो कार्यक्रम है खेत बचाओ अभियान, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी के मार्गदर्शन में पूरा एक महीना ही कार्यक्रम में चलेगा, 1 जून से लेकर 30 जून तक के। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है खेती में जो किसान भाई जो अधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करते हैं और नियमित रूप में उर्वरकों का उपयोग करते हैं उनको यानी हमें समझाइश देना है। सबसे पहले तो हमें यानी किसानों के खेतों की मिट्टी की नमूना लेना है और उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों को उपयोग करने के लिए किसान भाइयों को सलाह देना है। साथ ही साथ किसान भाई में कुछ भ्रांति है कि मात्र DAP का ही उपयोग करके फसल अच्छी होती है, तो हमें बताना है कि फसलों को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। सभी प्रकार के पोषक तत्व जब तक खेतों में नहीं डालेंगे तब तक कि हमारा खेत उन्नत नहीं हो सकता है और ज़मीन हमारी उपजाऊ नहीं हो सकती, एक प्रकार से मृत हो सकती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को जैविक खादों का उपयोग करना है, जिसमें प्रमुख रूप से गोबर की खाद, केचुआ खाद, नाड़ी विधि से बनी खाद, हरी खाद का उपयोग करना है। इसके बाद में ही हमें जैविक खादों का उपयोग करना है, प्राकृतिक खाद जैसे प्राकृतिक रूप से जीवामृत हुआ इसका उपयोग करना है, अमृत का उपयोग करना है, और इसके बाद में हमें रासायनिक खादों का उपयोग करना है जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो सके। साथ ही साथ यदि कीड़े बीमारी भी लगती है तो सबसे पहले हमें जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना है और उसके बाद में ही अन्य रासायनिक खादों का उपयोग करना है, रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है।
3: सर एक सवाल ये है कि अब ये जो अभियान हम शुरू कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई आज खेतों को बचाने की?
2: जैसे आधुनिकता के इसमें हम लोग भूमि का दोहन करते जा रहे हैं, अधिक पैदावार लेते जा रहे हैं। जैसे रायसेन जिला ही देखा जाए तो इसमें 3 फसल हम लगातार ले रहे हैं। खरीफ में प्रमुख फसल यहाँ की धान है, उसके बाद गेहूं ले रहे हैं और थर्ड फसल में मूंग ले रहे हैं। तो हमें यानी जमीन में उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए इन किसानों को जागृत करना बहुत आवश्यक है ताकि भूमि का दोहन भी ना हो, संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद जैविक खाद का उपयोग करें और पैदावार अच्छी हो।

0: ताकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें जमीन दिया है यही जमीन हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जमीन दे सके।
1: मैं डॉक्टर सी आर मेहता, निदेशक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। हमारा संस्थान कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, जैसे नए नए उपकरण का विकास करना और उनको फिर आगे ले जाना।
2: सर, ये आज ये कार्यक्रम हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे?
1: ये आज जो कार्यक्रम है ये खेत बचाओ पर है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत में खास तौर से क्या हो रहा है, आजकल की जैसे खाद है या जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग जरूरत से ज़्यादा या कम हो रहा है। तो इसके लिए ये है कि पहले तो आप मिट्टी का परीक्षण करें और फिर उसमें देखें कि मिट्टी में क्या क्या तत्व है और किन तत्वों की कमी है और कितनी कमी है। जितनी कमी है उसी के हिसाब से आपको उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो इस पर भी इसमें कार्यक्रम में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। वैज्ञानिक अलग अलग जगह जगह गाँवों गाँव जाएंगे और किसानों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। और विशेषकर मैं जैसे अभियांत्रिकी से संबंधित हूँ तो उसमें मेरा ये भी कहना है कि आप किसान भाई सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यूज

0: कमी है और कितनी कमी है, जितनी कमी है उसी के हिसाब से आपको उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो इस पर भी इसमें कार्यक्रम में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। वैज्ञानिक अलग अलग जगह जगह गांवों गांव जाएंगे और किसानों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। और विशेषकर मैं जैसे अभियांत्रिकी से संबंधित हूं तो उसमें मेरा ये भी कहना है कि आप किसान भाई सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यूज करें और उसमें ये देखें कि इस खेत में कितनी किस मतलब उर्वरक की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उतना ही अप्लाई करें और उसके लिए आप मशीन में सेटिंग भी कर सकते हैं।
1: अभी आज यहाँ पर कुछ किट्स वगैरह भी बांटी गई है किसानों को, लाभार्थियों को, तो आपके यहाँ आपके संस्थान से भी किसानों को किस तरह से प्रशिक्षण का लाभ दिया जाता है?
0: किसानों के लिए हमारे संस्थान में विशेषकर ये है कि एक तो हमारा अभियांत्रिकी का संस्थान है, तो जो नई नई मशीनें होती है उनको कैसे आप ऑपरेट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में भी हमारे संस्थान में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके अतिरिक्त हमारे संस्थान पर जैसे प्रोसेसिंग होती है कि आपके पैदावार हो गई पर्टिकुलर प्रोड्यूस, उसको कैसे उसमें प्रोसेस करें, उसमें वैल्यू ऐड करें, तो उस दिशा में भी हमारा संस्थान खास तौर से प्रशिक्षण देता है। और विशेषकर सोयाबीन प्रसंस्करण पर, सोयाबीन से टोफू बनाना है, दूध बनाना है या और दूसरी चाप बनाना, दूसरी प्रोडक्ट बनाना, उसमें भी हमारा संस्थान समय समय पर किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो जो है खेत बचाओ अभियान को सफल बनाएं?
0: किसान भाइयों से मैं विशेष अनुरोध यही करूंगा कि पहले तो वो अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, फिर उसमें देखें कि उनके खेत में इस समय किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और उसके हिसाब से फिर उसी न्यूट्रिएंट को जितना ज़रूरत है उतना अप्लाई करें। दूसरा मैं किसान भाइयों से ये भी कहूँगा, खासतौर से रामसिया गाँव में है आज और हमने ये देखा है कि गेहूँ का जो नरवई होती है वो किसान भाई जला देते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप नरवई को जलाएं नहीं, उसको खेत में ही छोड़ें, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही है नरवई कलेक्ट करनी है तो फिर उसके बेल बनाएं और उससे दूसरी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो उसको जलाएं नहीं, वो कि एक प्रकार के उर्वरक के रूप में काम करती है जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।
2: मैं डॉक्टर के एच सिंह, निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। सोयाबीन की बुवाई का समय लगभग आ चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, लगभग 20 जिलों में यहाँ बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है। तो जैसे जैसे समय आता जा रहा है कुछ प्रमुख बातें आज हम चर्चा करेंगे जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बुवाई का समय, सोयाबीन की बुवाई जब पहली वर्षा हो जाए, और हमारा ये कहना है कि यदि 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाए तब बुवाई करनी चाहिए। समय के अनुसार यदि आप चलें तो 20 जून के आसपास इस क्षेत्र में मानसून आ जाता है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, तो 20 जून से लेकर के और 30 जून के बीच में आपको बुवाई कर देनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि खेत की तैयारी क्या करें, कौन सा बीज लगाएं, बीज का उपचार कैसे करें और बुवाई की क्या विधि अपनाएं। तो इनमें जो आज समय शुरू हो गया है कि हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करनी है, आप अभी के जो मौसम देख रहे हैं इतनी तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा धूप और तापमान के कारण ये समय बहुत उपयुक्त है कि हम खेत में गहरी जुताई करके उसे खोल करके रखें, जिससे उसमें जो पिछले सालों से बीमारी और कीटों के जीवाणुओं के अवशेष रह गए हैं वो नष्ट हो जाएं, तो खेत में आने वाले समय में बीमारी कम होगी। जैसे ही वर्षा का आगमन हो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्योंकि सोयाबीन की फसल मानसून मौसम की फसल है, कभी बहुत अधिक वर्षा होती है जिससे पानी भर जाता है, फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है, और कभी कभी लंबा गैप हो जाता है, वर्षा नहीं होती तो सूखे की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इन दोनों प्रकार की विपदाओं से हमें जो मुख्य निवारण है उसके लिए मेड़ बना करके, या कहते हैं जैसे रेज्ड बेड मेथड, यानी बंड बना करके उसके ऊपर बुवाई करनी चाहिए, तो इससे दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा।
3: राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान को किसानों के हित में आज की जरूरत बताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा,
4: हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसको हम सब माँ मानते हैं, मानते कि नहीं मानते, और धरती माँ है।

कि नहीं। हम जो फसल उगाते हैं काय को उगाते हैं, हमारे जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं वो कहाँ उगते हैं, पानी अगर भर के लाते हैं तो वो भी कहाँ बहता है, धरती पे। इसलिए ओम पृथ्वी देवे च विद्महे सहस्त्र मूर्ते च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। आइए पहले धरती माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा उस मंत्र का अर्थ था हम पृथ्वी देवी को जानते हैं और उनके हजारों रूपों का ध्यान करते हैं। हे माता पृथ्वी, हमें बुद्धि दें और हमारे मन को प्रकाश से भर दें। ऐसी धरती माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, याद रखो किसान भाइयों, एक जमाना था जब खेत की बोनी पूरी होती थी तो धरती की पूजन करते थे, मच्छेंद्री की पूजन करते थे। याद है क्या कोई को? कई को याद होगा और नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा। जब हल से बोनी होती थी तो मुझे जैत का पता है, जैसे ही बोनी पूरी होती थी और हम एक मच्छेंद्री मैया ऐसे बनाते थे और वहां हल लेके आते थे और कहते थे पोर में पानी हर वो लो, और वहां गेहूं डालते हुए जाते थे। और बाद में जब कटाई पूरी होती थी तो अंत में वो गाड़ी में लगाते ले जाते थे, उसको कहते थे छिटकवार। याद है कि नहीं? अरे कहीं को याद नहीं होगा। और जब बोनी पूरी हो जाती थी तो जितने भी अपने मजदूर साथी होते थे जो बोनी में सहयोगी होते थे, घुंघरी गांव में बनती थी घुंघरी, अब तो भैया भूल ही गए घुंघरी, अब तो पिज्जा पास्ता ब्रेड आ गई घुंघरी अपनी, और सबको खिलाते थे। ये हम क्यों करते थे बताओ? ये इसलिए करते थे कि धरती हमारी माँ है, यही तो फसलें पैदा करती है, यही हमें अन्न देती है, इसी में उगा भोजन हम खाते हैं। अगर धरती माँ अनाज पैदा करने से इनकार कर दे तो बताओ हमारा पेट भर सकता है क्या? जोर से बताओ, भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो अपनी धरती माता के लिए कर रहे हैं। और क्यों करना पड़ा ये कार्यक्रम मेरे किसान भाइयों? आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है खाद की। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, खाद डालें लेकिन कितना डालें आखिर उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। फिर इल्ली मारना है, कीड़े मकोड़े जो फसल में लगते हैं तो दे स्प्रे। ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बेचैन हो गई और अब पुकार के कह रही है मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फसलें पैदा करती हूँ, नदियां मेरे सीने से होकर बहती है जो तुम्हें पानी देती है, पेड़ जो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं वो मेरे पेट पर उगते हैं, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा खाद डालोगे, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां डालोगे तो उससे माँ को कष्ट होता है, धरती को कष्ट होता है। और किसान भाइयों, मित्र की जो जीव है कीट, अभी बात कर रहे थे, मुट्ठी भर मिट्टी में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो करोड़ों छोटे छोटे जीव है जीव। और ये जीव क्या करते हैं? ये जीव अगर जिंदा रहते हैं तो धरती से पोषक तत्वों को खींचते हैं और फसलों को उनसे आयरन हो, जिंक हो, बोरास हो, अलग अलग तरह के तत्व मिलते हैं, लेकिन हमने पेस्टिसाइड डाल डाल के वो मित्र कीटे ही मार डाले, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। आप देखो पुराने जमाने में जब हम बोनी करते थे तो खेत की मिट्टी कितनी भुरभुरी रहती थी, कितनी। आप बखर डाल के देखो, आप हल डाल के देखो, आप ट्यूबवेल खोद के देखो, भुरभुरी थी, तुरंत गड्ढा हो जाता था। और आज खोद के देखो कितनी कड़ी हो गई है, पानी दे दे के फिर हम जमीन को फिर से खेती के लायक बनाते हैं। तो आज मैं पूरे देश से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाद नहीं डालना है,
प्राकृतिक खेती।

0: एक उपाय है, बिना ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद है, इसके बिना भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है, आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है। हम धरती में पता ही नहीं करते कि कौन से तत्व है और कौन से तत्व नहीं है, पता ही नहीं करते और डाल देते हैं। रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल ने उतना ही बोरी दिया, पिछले बार डाला एक बोरी, कहने के बाद डेढ़ बोरी डाल दो, अब डाले जा रहे हैं। कैसे कोई फायदा हो रहा है, ये वैज्ञानिक बैठे हैं, ये सब शोध कर चुके हैं रिसर्च, कैसे खाद डालने से कोई फायदा नहीं होता। कितना खाद डालें तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं हमारे, ये पता करके डालें। और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, आप में से जो किसान भाई बैठे हैं, कौन कौन से कौन कौन के पास वो मिट्टी वाला कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड कौन के पास है, कोई हाथ उठाए, आपके पास है भैया? एक कार्ड बना है, जैसे अपना परीक्षण होता है ना, आदमी की खून की जांच होती है, भाई बहन कोई भी, और पता चल जाता है फलानी चीज है फलानी चीज नहीं है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड अब बना है, बन रहा है, जिसमें अपन ये पता कर लेंगे कि अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है।
1: कार्यक्रम को स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। एक माह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने के पश्चात क्षेत्रीय निवासियों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में क्षेत्रीय ग्रामीण जन, कृषि से जुड़े हुए अधिकारी तथा जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। तो ये थी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ग्राम रमासिया में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।
2: भैया हेरो, अब अपन ने सुनी जा रेडियो रिपोर्ट, और जी को रेडियो सहयोग हतो मैं सोनी जी को, और विषय हतो कि ग्राम रमासिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कछु उद्यानिकी से संबंधित सलाह देवे चाहते हैं आपको कि तेज हवाओं एवं आंधी तूफान से होए वाले नुकसान को कम करवे के लाने पौधन को सहारा जरूर दे देवे, और फसलन में माहू, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी जैसे कीटन तथा मिर्डियो एवं एंथ्रोक्नोज जैसे रोगन की नियमित निगरानी करत रहे, और आवश्यकता अनुसार पौधन को संरक्षण को उपाय सोई अपनावे। अब हम चलत जल्दी से कल के कार्यक्रम सोई बता देवे आप उनको। कल भुनसारे कृषि चर्चा में सुनियो जैविक संवर्धित फसलों का पोषण महत्व, विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर आकांक्षा पांडे, और संजावरिया ग्राम सभा में सुनियो ग्रामीण विकास में रेडियो को सम्यक योगदान, विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे। अब चलती बिरिया सुन लेते हैं जो कहरवा जी ये गांव है गिरजाबाई ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण।
1: इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। पार्टिसिपेंट्स आर Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
4: Namaskar, thank you.
3: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में

0: अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इवन इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity.

0: activity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
0: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, yes, that India should be annadata for the entire world.
1: Yes.
0: See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. Unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye, jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sare cheeze bhi dete hue, bhavishya ko Bharat krishi kshetra mein, how it will go ahead and how it will become the provider for the entire world. That is behind it. So in this dream, you know, to see that the rural India transforms, you have seen that the government has taken into account all the new problems that are coming, like climate change, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains.
1: Yes.
0: You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support.
1: Right.
0: For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit taxes, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
0: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
1: Right.
0: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी

0: नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरीगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30-70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियाँ पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला, तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले, यानी MSP के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपये मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price, एंड

0: after that, at the time of harvest, he needs some financial help
1: Yes.
0: to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Singh was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean, with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is, like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज़ से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% अकेले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2, 4, 5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पर आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है. और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हज़ार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हज़ार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव

0: डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक
1: एक
0: साल
1: वर्ष
0: में,
1: का
0: सिर्फ
1: जी।
0: 1 वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हज़ार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक
0: तो
1: आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको, जितना उनकी डिमांड होती है, उसको
1: जी
0: पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ट अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart.
1: Yes.
2: See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected.
1: Yes.
2: And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So, Mr. Singh, जैसा इन्होंने कहा, Mr. Iyer ने कि एक परिकल्पना है कि हम जो विश्व है उसको भी एक्सपोर्ट करें. हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं. 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं, और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर भी

0: बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
1: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तो टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
0: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं व परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण. प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट. प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज. सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important to take care of quality, to take care of branding and standing.

0: standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry, and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
0: Thank you very much.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. The participants were Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: अभी आप समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। एक्शन रीप्ले से सुनिए ये गीत दिलेर मेहंदी की आवाज में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और प्रीतम ने दिया है संगीत। oh,

अगला गीत सुनिए, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने लिखे हैं बोल और जतिन लतिल ललित का संगीत है।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है, एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना

0: शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका

0: संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में

0: पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा

है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। यह सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: शरपंसन अनासिर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज़्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज़्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी CBSE में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरियत

0: खुद ही मुर्मू ने कहा है कि तालीम बा इख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मायने में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की करें।
1: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी जुबाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के जुबाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जुबा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौक़े तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फ़रोग़ देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली लाई है। इस मुदत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख्वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू की गई थी ने लाखों ख्वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बगैर जमानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपये ख्वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख्वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख्वातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार

डेल्सी रॉड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रॉड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत खत्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। जाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निज़ाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिज़ाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकतदारों और सनतकारों को इस उसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज कर लिया है। इत्तलात नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरून मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकतदारी को वसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने के पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज़्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट, 140 से ज़्यादा लाइव TV चैनल्स और 200 से ज़्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसां अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दीगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिज़ाइल हमलों में कम अज़ कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया गया। जनाब जेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियाट फिजाई दिफाई मिज़ाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मज़ीद शदीद बना देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करके उसकी जगह
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई का जामे निज़ाम मुतारिफ कराया जाए।

ये फैसला मुल्क के फराते जर और कीमतों से मुतालिक आदाद व शुमार के निज़ाम को जदीद बनाने और उसे आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड के टोंटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा Rudram-2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज़ के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए डॉन फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब अगली आवाज़ सुनिए किशोर कुमार की फिल्म घर से। ये गीत लिखा है गुलजार ने, जिसे संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

जमाने को दिखाना है फिल्म से अगला गीत सुनिए आरडी बर्मन और साथियों की आवाज में, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत

लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा।

आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म से, जिसके गायक और संगीतकार हैं बप्पी लहरी और रचनाकार हैं शिव कुमार सरोज।

मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ में अगला गीत सुनिए शान फिल्म से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से। नाजिया हसन की आवाज़ है, इंदिवर के लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है बिद्दू ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए ख्याल गायन का। राग है गौड़ मल्हार। प्रस्तुत कर रहे हैं रामदास मुंगरे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का आनंद ले रहे थे। आपने सुना ख्याल गायन राग गौड़ मल्हार में, प्रस्तुति थी रामदास मुंगरे की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10:25 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।